खेल अभिजोग मिल बिछोड़या संजोगी मेल। जिसनो तू जाना एह सोई जान जाना, हर गुण सद ही आख वखाणै। जिन हर सेविया तिन सुख पाया, सहज ही हर नाम सुमाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए।

का दोहरा। काल पुरुष की देह मो कोटक विष्णु महेश कोट इंद्र ब्रह्मा के तेरा वसास करोर जलेश दोहरा।

चाओ पाई। जो एह कथा सुने अरगावै दुख पाप तेह निकट न आवै, बिसन भगत की ए फल होई, आद ब्याज छुवै सकै न कोई। सम्मत सत्रह सास पचामन हाड़ वदी प्रथम सुख दावन, तो प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा, भूल परी लह देह सुधारा दोहरा। नेत्र तुंग के चरण तार, स्तद्रव तीर तरंग, श्री भगवत पूरन कियो, रागबर कथा प्रसंग दोहरा। साध असाध जानो नहीं बाद, सुबाद विबाद, ग्रंथ सकल पूरन कियो, भगवत कृपा प्रसाद सवैया।

ना मान्यो। सिमरत शास्त्र भेद सब बह भेद कह हम एक न जानेयो। श्री अस्पान कृपा तुमरी कार मैं न कहियो सब तो हे बखानियो। दोहरा सगल द्वार कौ छाड कै गहयो तुहारो द्वार बाहीं गहे की लाज आसो। गोविंद दास तुहार।

नित नित रख उर धारो तम संसार चरण लग तरिय सब नानक ब्रह्म पसारो। श्लोक महला पंजवा।

बिना सुनो एक दीना देहो दर्श नानक बलिहारी जीड़ा बल बल कीना सुकाहो टल गोर सेविया अहनस सहज सुभाए दर्शन परसे गुरु कै जन्म मरण दुख जाय होवै सिफत खसामंदी नूर अरसह कुरसह चटियै तुद डिठे सचे पात साह मल जन्म जन्म दी कटी है।

परम सन्मान योग गुरु खालसा सात संगत जी, आप संगतां संध्या समय सतगुरु दे पावन पवित्र सोने दरबार दियां हाजरियां पर रहे हो। तुरकी बाणी दा रस पिन्ना कीर्तन सरवण कीता है। कीर्तन सरवण करवा रहे सन हजूरी रागी सचखंड श्री दरबार साहिब श्री अमृतसर साहिब भाई साहब भाई गुरप्रीत सिंह जी समूह जथा। हुण आप संगतां पावन गुर इतिहास की कथा सरवण कर रहे हो। ये पावन पवित्र इतिहास गुरु अर्जन साहिब जी का प्रारंभ है, जो आप संगतां ने सरवण करना है। धन धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज किवें सेवा करवा रहे हैं श्री अमृतसर साहिब सरोवर दी। रामदास सरोवर नाते सब उतरे पाप कमाते, निर्मल होए कर इशनाना, गुरपूरै कीने दाना। एक पासे शहर भी अमृतसर सिफती दा घर वह बनवा रहे ने, इस तरह सेवा दा कुंभ लग्या होया है। किवें किवें सिख दूर दराडे तो आके सेवा कर रहे हैं, वह प्रसंग चल रहे ने। आप संगतां प्रेम दे नाल इतिहास की कथा सरवण करो।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: 1550 KRPI Radio ते चल रहा है live from गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब स्कॉट रोड सरी।

सुन सुन होवै परम गत मेरी। जलन बुझी शीतल होए मनुआ, सतगुर का दर्शन पाए जियो। सगल गुणा के दाते स्वामी,

जैसे मां की रकत पिता बिंद धारा, ए खून ते बिंद तो बने है, ते खून ते बिंद रोटी तो बनता है, खून ते बिंद भोजन तो बनता है। बिंद ते जिन पिंड किया अगन कुंड रहाया, ए बिंद तो बनता है। मां की रकत पिता बिंद धारा, पिता दा बिंद मां दा लहू, लहू भोजन तो बनता है, बिंद भोजन तो बनता है। इंज कलो ता ए अनमई कोश भोजन तो बने है, रोटी तो बने है। जद बनया भोजन तो है तो फिर ए जीवेगा भी भोजन दे आसरे थे, बिना भोजन तो नहीं जिंदा रह सकता। बनया जो भोजन तो है, ए अनमई कोश बनया जो रोटी तो है, रोटी तो बिना नहीं रह सकता। ये रोटी तो बनया होया शरीर अंतिम समय तक रोटी मंगेगा, भोजन मंगेगा, अन्न मंगेगा। लेकिन मनमयी कोश, विज्ञानमयी कोश रोटी तो नहीं बनया, भोजन तो नहीं बनया। वो फिर किस तरह बने है? जिथे लंबी यात्रा करके तन रोटी तो बने है, रोटी पच के किधरे खून बनी है, रोटी पच के किधरे बिंद बनी है, फिर बिंद ते खून दा संजोग होया वासना करके फिर ए तन बने है। लंबी यात्रा मनमयी कोश, विज्ञानमयी कोश, इस सीधा ब्रह्म तो आया है, परमात्मा तो आया है। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछा। इस तरह मनमयी कोश, विज्ञानमयी कोश अति सूक्ष्म है, निराकार है। ये अन्नमयी कोश प्राणमयी कोश आकार रखता है, वजूद रखता है, देख सकते हैं। अपना तन देख सकते हैं, दूसरे का तन देख सकते हैं, लेकिन असी दूसरे का सूक्ष्म शरीर नहीं देख सकते, दूसरे का मन नहीं देख सकते। थोड़ा जिहा यतन करिए, बहुत हिम्मत करिए, तो किधरे अपना मन थोड़ा जिहा महसूस कर सकते हैं, दूसरे का नहीं। एहो मन आर सी कोई गुरमुख देखे, कदी कदाई कोई कद गुरमुख अपने सूक्ष्म शरीर दे दर्शन करता है, भी ये शरीर मेरा की है। हुण दोहां दी तुलनात्मक गल मैं थोड़े सामने रखना चाहना। तन दे च स्वास चलदे ने, खून गर्दिश करदा, दिल धड़कदा। मनमयी कोश दे च विचार चलदे ने, यादां चलदियां ने, सोचनी चलदी है। प्राण श्वासां दा चलना, दिल दा धड़कना, खून दा चलना, ये अन्नमयी कोश दी जिंदगी है। विचारां दा चलना, सोचनी दा चलना, सिमरती दा चलना, ये सूक्ष्म शरीर दी जिंदगी है। पर देखना पेगा विचारां दे च चलदा की है, सोचनी दे च चलदा की है, यादां दे च चलदा की है। कहिंदे ने वासना चलदी है, वासना चलती है। वासना किस दी? प्रभता दी वासना, पदार्थां दी वासना, रूप दी वासना, ऐ चलती है। यादां विच, विचारां विच, सोचने विच। ये एक अध्यात्म विचार, जिंदगी सारी कर्म कांड विच ना लंघ जाए, इस वास्ते मैं ये अर्ज किया है। एक कथा कीर्तन

ਤਨਵੀ ਅਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਨਮਈ ਕੋਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਇਸ ਕਥਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਾਠ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਪ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਰ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਥੱਲੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਭਜਨ, ਇਹ ਕਥਾ, ਇਹ ਕੀਰਤਨ, ਇਹ ਜਪ, ਇਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਮਨਮਈ ਕੋਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਨੁਕਤਾ ਬਿਆਨ ਮੈਂ ਕਰਾਂ। ਨਾ ਸਮਝੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪਸ਼ੂ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਗਲਤ ਭੋਜਨ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੂਅਰ ਉਹ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੁੱਤੇ ਉਹ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਗਲਤ ਆਹਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਮਨੁੱਖ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਚੇਤ ਤਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਸਵੱਛ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ, ਫਿਲਟਰ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ, ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਨੁੱਖ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ, ਗੰਦੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣ ਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਦੇ ਦਿਸਾਂ ਜਲ ਪਰ ਬਤ ਬਨ ਰਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਡਿੱਠਾ ਮਿਰਤ ਕੋ ਇਲ ਬਹਿਠੀ ਆਏ। ਇਲ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਉੱਡਦੀ ਹੈ, ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੀ ਉੱਡਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਗੰਦਗੀ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਪੁਰੂਥਾ ਸੜਿਆ ਗਲਿਆ ਕੋਈ ਮਾਸ ਦਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਟੁਕੜਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਕਦਮ ਉੱਪਰੋਂ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੀ, ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਪਟਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਹੈ, ਫਿਲਾਸਫਰ ਹੈ, ਚਿੰਤਕ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਹੈ, ਬੜੀ ਉਡਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਕਿ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਪ੍ਰਭਤਾ ਦੀ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਰੂਪ ਦੀ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਡਾਰੀ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਕਦਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਰਕੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਚੋਟੀ ਦਾ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਹੈ, ਫਿਲਾਸਫਰ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਕ ਹੈ, ਕਿਤਨੀ ਸੂਝ ਬੂਝ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਚਾ ਪਿਆ ਉੱਡਦਾ, ਵਿਚਾਰ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਨੇ, ਖਿਆਲ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ, ਲੇਖਣੀ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ ਬੜੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਚਾ ਉੱਡਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਪੈਣਾ, ਇਹਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਰਤੀਆਂ ਵੀ ਉੱਚੀ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਡਿੱਠਾ ਮਿਰਤਕੋ, ਕੋਈ ਮੁਰਦਾਰ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਇਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੁਰਦਾਰ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੂਅਰ ਉਸ ਗਾ। ਇਹ ਮੋਈ ਹੋਈ ਗਊ, ਇਹ ਮੁਰਦਾ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮੋ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਹੱਕ ਹੈ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ, ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਛੋਟੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਹਥਿਆ ਲੈਂਦਾ ਜੋ ਉਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਛੋਟੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਕਤਵਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮਨੁੱਖ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਖੋ ਲੈਂਦਾ ਜੋ ਉਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੁਰਦਾਰ ਹੈ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੁੱਟੇ ਖਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਲੁਟੇਰਾ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਕਾਤਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੋ ਵੱਡੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਰਦਾਰ ਖਾਣ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਮ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਲ ਨਾਲ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਚੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਸੋਚ ਨਾ ਲੈਣਾ,
ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਡਿੱਠਾ ਮਿਰਤਕੋ ਇਲ ਬਹਿਠੀ ਆਏ, ਅਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਜਵਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੁੱਢਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਮਨੁੱਖ ਤਨ ਕਰਕੇ ਬੁੱਢਾ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਰਕੇ ਬੁੱਢਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਬੁੱਢਾ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਰਕੇ ਬੁੱਢਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਬੁੱਢਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਗੇੜ, ਇਹਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਬੁੱਢੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਕੇ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਸ਼ਨਾ ਬੁੱਢੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਮੀਦ ਇਹ ਗੱਲ ਪਕੜਦੀ ਚਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਮੇਰ ਸਰੀਰ ਕਾ ਵਾਸ਼ਨਾ ਬੱਧਾ ਆਵੇ ਜਾ। ਮੁੜ ਮੁੜ ਵਾਸ਼ਨਾ ਮੇਰੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਚ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੋ ਜਨਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਰਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਅਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਇਹ ਖਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਮ ਜਮ ਮਰੇ ਮਰੇ ਫਿਰ ਜੰਮੇ, ਬਹੁਤ ਸਜ਼ਾਏ ਪਿਆ ਦੇਸ ਲੰਮੇ। ਅਸਥੂਲ ਤਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ, ਅਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਤਨ ਦੀਆਂ ਤੇ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਮਨ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਲੋਭ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਨ ਦੀ ਤੇ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਮਨ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਨ ਦੀਆਂ ਤੇ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਅਧਕ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਸ ਤਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਧਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਾਮ ਨੂੰ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ? ਇਹ ਤਨ ਨੂੰ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ, ਮਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਆਚਾਰੀਆ ਤੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਇੰਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, 90% ਰੋਗ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਨੇ, ਸਰੀਰਕ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਨੇ। ਰੋਗ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਉਸਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਇਲਾਜ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਤਜਰਬੇ ਹੋਏ। ਪਹਿਲੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਆਚਾਰੀਆ ਆਏ, ਫਿਰ ਯੂਨਾਨੀ ਇਲਾਜ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਐਲੋਪੈਥੀ ਆਈ, ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਆਈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੈਚੁਰਪੈਥੀ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ ਰੋਗੀ ਤੇ ਉਤਨੇ ਹੀ ਉਤਨੇ। ਜੋ ਜੋ ਦੀਸੇ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ, ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਹੌਸਪੀਟਲ ਬਣਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੋਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਟਿਆ। ਜਿਸਦਾ ਰੋਗ ਜ਼ਰਾ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਰੋਗ ਅਜੇ ਸੀਮਾ ਦੇ ਚੋਂ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੰਦਰੁਸਤ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਧਰੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਜੋ ਜੋ ਦੀਸੇ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ, ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋਗੀ। ਸਵਸਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਸਦਾ ਮਨ ਸਵਸਥ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਪਤਾ ਸਵਸਥ ਦੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਤੇ ਸਿਹਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਇਹ ਸਵਸਥ ਸ਼ਬਦ ਬੜੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਵੈ ਇਸ ਸਥਿਤੀ
अपने विच टिक गया, हुण मन अपने विच आनंदित हो गया, टिक गया। ते परमात्मा दी अंश है, भाव परमात्मा टिक गया, अपने घर टिक गया। उन्हों कहिंदे ने स्वस्थ, जो स्वय स्थित हो गया, स्वयं विच स्थित हो गया, वो फिर हो सकता है शायद तन दे तल ते भी नवा नरोवा होवे। जिन्हां नूं तुसी तन दे तल ते तंदुरुस्त देखदे हो, नहीं ने दिखाई दे रहे ने, रोग अजे जरा सीमा च है, ये भी मैं कर दे, अजे जरा सीमा तो अगे नहीं गया। अनेकां प्रकार दे रोगां नाले देहुरी भरी हुई है, लेकिन इदियां जड़ां सूक्ष्म शरीर दे चने, मन दे चने। अस्थूल शरीर दे चों रोग निकलन, आयुर्वेद आचारिया अग्गे आए, होम्योपैथी आई, यूनानी इलाज आया, एलोपैथी है, और बड़े यतन ने, लेकिन गुस्ताखी माफ, मनुख दा मन किवें स्वस्थ होवे, स्वय स्थित अपने विच टिके, इहदे कोई मनुख उद्यम भी नहीं करदा, यतन भी नहीं करदा, समा भी नहीं कढदा, इहदी लोड़ भी नहीं समझदा। तो होंदा की पे है, रोज रोज मनुख दा मनमई कोश, विज्ञानमई कोश रोगी होंदा जा रहा है। इनू विज्ञानमई कोश क्यों कहे, इहदे च शक्तियां बड़ियां ने, इहदे च बड़ा कुछ है, बशर्ते इसनू सुचेत करिए। तन दी संगत करदिआं करदिआं, चूंकि तन जड़ है, तो सूक्ष्म शरीर भी अचेत हो गया है। जैसी संगत वैसी रंगत, संगत दा असर है। ये पंजे दे पंजे तत् जड़ ने, जड़ दी संगत करदिआं करदिआं सूक्ष्म शरीर भी जड़ हो गया, भाव अचेत हो गया, सौं गया। तो मैं कई दफा अर्ज कीती है, वाहिगुरु वाहिगुरु दा जप, वाहिगुरु नूं सुणाउण वास्ते नहीं, इस सुत्ती हुई चेतना नूं जगाउण वास्ते, इस सुते हुए मन नूं जगाउण वास्ते। सिमर सिमर गुर सत गुर अपना, सोया मन जागाई। ये कितना जपिए, बारंग बार बार प्रभ जपिए, जपी जा जपी जा, उतने चिर तक जपी जा जितने चिर तक मन पूरा जागदा नहीं। पूर्ण तौर ते जागया होया मनुख सूक्ष्म तल ते महाराज कहिंदे ने, इस ग्रह में कोई जागृत रहे, इस ग्रह में कोई जागृत रहे, साबत वस्त ओ अपनी लवे। साबत वस्तु की परमात्मा, परम रस परम आनंद, ये किसनों प्राप्त होंदा है, जेदा मन पूर्ण तौर ते जाग गया। कहिंदे ने एक भाग ही जागे, मन दे नौ भाग सुते पे ने, तो उस एक भाग नूं थोड़ा जिहा पदार्थां दा बोध है, थोड़ा जिहा संसार दा बोध है, बाकी कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। इस वसे गुरबाणी एक होर शब्द वर्दी है, जागत सोया जन्म गवाया। ये जागदा दिखाई दे रहा है जबकि टोटली सुता पे है, कोई परमात्मा का पता नहीं, कोई परम रस का पता नहीं, कोई समाधि का ज्ञान नहीं, कोई प्रेम का पता नहीं, कोई उस महान चानण का पता नहीं। जागत दिखाई दे रहा है, जागदा सोया, इति सूक्ष्म शरीर के तल ते सोया होया, सुता होया। जागत सोया जन्म गवाया, वाहिगुरु वाहिगुरु दे जप नाल जद कोई सूक्ष्म शरीर नूं अध तो वद जगा लैंदा, ऐसे मनुख नूं कोई गैबी शक्तियां मिल जांदियां ने, जिन्हों रिदियां सिदियां भी कह देंदे ने। ऐसा मनुख उस सूक्ष्म शरीर नूं
अपने शरीर दे चों कढ भी सकदा है, किधरे लै जा भी सकदा है, फिर वापस ले आ सकदा है। तुसी आखोगे मैं की आखदा पिया, साडे गुरमत दे च भी ऐसा हुंदा रहा, बाबा राम राय करदे रहे। हर दूजे तीजे महीने वो ऐसा कर लेंदे सन, फिर वापस आ जांदे सन। एक दफा अपनी पत्नी नूं कहा, मैं एक हफ्ते बाद आना है, मेरे इस देही दा ख्याल रखें, मेरे शरीर दा ख्याल रखें, क्योंकि कुछ मसंद मेरे दुश्मन ने ते मैनू मुर्दा जान के किधरे होर अनर्थ ना कर बैठन। पत्नी ने कहा, मैं दसांगी नहीं किसे नूं, लेकिन मसंदा नूं पता चल गया। तीसरे दिन उते अर्थी सजा के ले आए, बई राम राय गुजर गए ने, खत्म हो गए, आपां ले जाना है, चिता जलानी है। हुण ये मसंद बहुते सन, भ्रष्ट हो गए सन, इन्हां दी गलत वरतों राम राय करदे रहे तो मसंद अज राम राय दी गलत वरतों करन लग पए। इस तरह ही होंदा है, चिता ते लिटा दिता है शरीर, मरिया होया शरीर ते आकड़ जांदा है, पर तीन दिन का नहीं आकड़िया होया सी, मुर्दा नहीं सी, पर लिटा दिता है, कफन पा के ले चले। रुदन करदी रह गई बाबा राम राय दी पत्नी, शोर शराबा पांदी रह गई, तुसी जिंदा मनुख रह जा रहे हो शमशान घाट विच, पर नहीं मन्ने मसन, चिता ते रख दिता है, अग भी ला दिती है, अद्धा शरीर जल गया। गुरप्रताप सूरज की कथा जो सारे इतिहासक स्थानों में आती है, अद्धा शरीर जब जल गया तो बाबा राम राय वापस आए, सूक्ष्म शरीर आया। पर हुण देही अद्धी तो ज्यादा जल चुकी सी, सूक्ष्म शरीर लई प्रवेश करन दा साधन खत्म हो चुका सी। फिर भी प्रवेश करके इस अधे जले शरीर दे चों भी आवाज बुलंद होई, ऐ मसंदो तुसी मैनू जिंदा साड़े है, गुरु थानू जिंदा जलाएगा। इनानू डेरा दौन दे च धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने महान जालम ते दुष्ट जान के जिंदा जला दिता। इतिहास है, राम राय अक्सर ऐसा कर लेंदे सन, शायद अपने शंकराचार्य का नाम सुनिया होवे, वह भी कर लेंदा सी, इस तरह वह भी कर लेंदा सी। मंडन मिश्र जो मांडला दे च रहिंदे सन, उन्हां दे नां करके शहर का नाम मांडला है, मध्य भारत का एक वड्डा शहर है मांडला, इत्थे मंडन मिश्र रहिंदे सन, बड़े उच्च कोटी दे विद्वान। ते शंकराचार्य दा जमाना सी, ते उना दिनां दे विचार वटांदरे दा एक ढंग आउंदा सी, जगह जगह विचार वटांदरा करना, जिहड़ा विचार दे हार जाए उहदे कोल सारे ग्रंथ लै लैणे, इधर दे हुण इह ग्रंथ पढ़न दा तेरा हक नहीं है। मंडन विशर ये शंकराचार्य कोल हार गए, जबकि शंकराचार्य नूं जगत गुरु भी कहिंदे सन, जगत गुरु शंकराचार्य, चार मठ इसने बनाए और इस ढंग नाल प्रचार कीता, थोड़ी जिहा नाल हिंसा जुड़ गई, बौद्ध धर्म दे पैर हिंदुस्तान दे चों उखड़ गए। शंकराचार्य करके बौद्ध धर्म हिंदुस्तान तो निकलिया, बहुत सारे ते मार दिते गए, जिंदा जला दिते गए, कतल किए गए, पर कुछ भिक्षु नस गए, तिब्बत बर्मा लंका, कुछ होर चोटी दे होर भी अगे चले गए, चाइना जापान, सारा एशिया जेड़ा अज बुद्धिस्ट है, बाद विच रशिया अफगानिस्तान भी इस दी लपेट च आया, बोधी सन, इत पिछे तालिबाना ने बोधियां दे वड्डे वड्डे मंदिर गिराए। बहुत धर्म सारे भारत दे छाया होया सी शंकराचार्य दे अद्वैतवाद दे प्रचार नाल,
और इस दे नाल हिंसा जुड़ गई। सूरजवंशी राजिया ने हिंसा शुरू कर दी तो पैर उखड़ गए। महात्मा बुद्ध ने भिक्षु तैयार किए सन, लड़ाक तो है नहीं सन, तो पैर उखड़ गए। शंकराचार्य ने मंडन मिसर नो अद्वैतवाद दी विचार दे हरा दिता और आख्या, मंडन जी हुण जितने ग्रंथ ने मेरे हवाले करो और मेरी कदमां ते झुक के हार तस्लीम करो। बड़ी भीड़ विच ये विचार वटांदरा होया सी। मंडन मिश्र जद कबूल करन लई खड़ा होया हार, इहदी पत्नी अगे आ गई। वो शंकराचार्य नू कहिंदी है, मैं कुछ बहुत एक जरूरी जिया विचार भी इस दे थोड़े सामने पेश करन लगा, उन्हों भी ध्यानपूर्वक सरवण कर लेना। मंडन मिश्र दी पत्नी अगे आ गई, कह लगी शंकराचार्य नू, ए जगत गुरु एक गल सुनो, ग्रस्ती ही पूरन होंदा है पत्नी नाल, तुसी मंडन मिश्र नू हराया, अर्ध शरीर नू हराया, पूरे नू नहीं, मैं मौजूद हाँ, मैनू हराओ तां मंडन मिश्र दी हार होवेगी, वरना नहीं। इस तरह तुसी अपनी जित दा नारा नहीं ला सकते, इस तरह मंडन मिश्र थानू ग्रंथ नहीं पेश करेगा, वह थोड़े कदमों ते झुक के हार नहीं तस्लीम करेगा, तुसी मैनू हराओ। शंकराचार्य कहन लगे ठीक है, विचार दा विषय पहले तो रखना है कि मैं रखा। मंडन मिश्र दी पत्नी कहन लगी हुण मैं रखांगी, पहले उन्हें काम सूत्र अगों रख दिता। शायद आपको पता होवे ऋषि वात्सायन होए ने जिन्होंने सिर्फ काम दे उते ग्रंथ लिखे, उन्हों काम सूत्र कहिंदे। उस वक्त दे बड़े बड़े आचार्य संत महंत जद मन ऋषि वात्सायन नु, क्योंकि ऋषि सी बड़ा अभ्यासी समाधि लीन, उन्हों आख्या गया ये तू किस विषय ते लिख रहे हैं। उन्हें बड़ी प्रबल दलील दिती, लोभ ते लिखिया भी जा सकता है, बोलिया भी जा सकता है, ते लोभ कर करके जो लोग भ्रष्ट होए ने वह भी बोलिया जा सकता है, हंकार ते लिखिया भी जा सकता है, बोलिया भी जा सकता है, और हंकार जिन्हां नूं हिंसक बना देंदा है ते महान जालम बना देंदा है ते अनर्थ करदे ने, इस ते भी बोलिया जा सकता है, क्रोध ते भी बोलिया जा सकता है, मोह ते भी बोलिया जा सकता है, पर काम जिहड़ा स्त्री नूं गनका बना देंदा है ते पुरुष नूं बलात्कारी बना देंदा है, अगर सीमा तो अगे हो जाए, क्यों नहीं बोलिया जा सकता, क्यों नहीं लिखिया जा सकता। ऋषि वात्सायन, या ते कहो हर एक दा काम सीमा चाहे कोई भ्रष्ट नहीं आउंदा, कोई पुरुष बलात्कारी नहीं, कोई स्त्री गनका नहीं, गुस्ताखी माफ, सारी दुनिया दे धन खतरे च है, जान खतरे च है, स्त्री दी असमत इज्जत आबरू खतरे च है, सारी दुनिया च। क्यों? जिन्हां दा अहंकार सीमा तो वध गया है, वो किसी दे लई भी जान दा खतरा बन सकदे ने, जिन्हां दा लोभ सीमा तो अगां वध गया है, वो किसी दी धन संपदा लई खतरा बन सकदे ने, किसी का काम सीमा तो अगे चला गया है, वो किसी की भी इज्जत आबरू असमत लई खतरा बन सकते हैं। तुसी एक शहर का भी नां नहीं लै सकते, ये तीन खतरे इस शहर देश नहीं ने, हर जगह ने, हर जगह ने। वात्सायन कहते ने मैं इस विषय से बोलांगा, इस वास्ते बोलांगा कि गनकापन जो स्त्री के तल से पैदा होंदा है खत्म होवे, बलात्कारी तल जो पुरुष दे तल ते आउंदा है खत्म होवे। सारी दुनिया विच वख-वख साजो समान दे बाजार ने, सब्जी मंडी है, लोहा मंडी है, क्लॉथ मार्केट आउंदी है, सारी दुनिया च स्त्रियां दे बाजार भी ने जिथे स्त्री दी असमत बिकदी है, इज्जत बिकदी है, सारी दुनिया च।
इति मनुख है, इंसान है। पुरुष दा बलात्कारी होना, इस तरह दा स्त्री दा गनका हो जाना, ये दोहां दे तालमेल तो इस तरह दा होया है। आपदी ग्यातली अर्ज करां, दसम ग्रंथ विच एक भाग सतगुरु ने इस ते लिखे है, गुरु गोबिंद सिंह ने, जिस दे उते बड़ा रोला पाया कईआं ने। गुरु गोबिंद सिंह ऐसा नहीं लिख सकते। मैं उन्हां नूं जवाब दिता, हिंदू जगत विच एक ऋषि लिखदा है, उन्हों ते वह ऋषि कहिंदे ने, संत कहिंदे ने। ते दसम ग्रंथ दे बोल पढ़ के थोड़ियां उंगलियां उठ जांदियां ने गुरु गोबिंद सिंह ते। इस दलील का कोई जवाब नहीं सी। विवाद चलता पे है और जिन्हां जिन्हां ने लिखे है करीबन करीबन अकाल तख्त तो तनखाइया करार दिते गए। मैं फिर अर्ज करा, जे मोह ते बोलिया जा सकता है, लिखिया भी जा सकता है। मोह मनुख नूं भ्रष्ट कर देता है। मोह तो मुराद मेरा, यह सिर्फ मेरा है, इस वास्ते मैनू चंगा लगता है। मैनू अपना करूप बच्चा भी चंगा लगता है, पड़ोसी का सुंदर भी नहीं चंगा लगता, क्योंकि जो मेरा है उस नाल मोह है, जो पड़ोसी का उहदे नाल मेरा मोह नहीं। मैनू अपना औगणहारा बच्चा भी चंगा लगता है क्योंकि मोह है। पड़ोसी का गुणवान बच्चा भी चंगा नहीं लगता क्योंकि मोह मेरा, वह मेरा है ही नहीं। तो ये मोह भी बड़ा भ्रष्ट करता है। मेरा जो मेरा है ये उस नाल इंसाफ करता है, जो मेरा नहीं है उस नाल बेइंसाफी करता है, उस नाल इंसाफ नहीं करता। इस वास्ते मोह भी मनुख नूं भ्रष्ट करता है, हंकार भी मनुख नूं भ्रष्ट करता है, लोभ भी मनुख नूं भ्रष्ट करता है, काम भी मनुख नूं भ्रष्ट करता है, और क्रोध भी इतना कठोर मनुख नूं बना देता है, बड़े बड़े अनर्थ करवा देता है। मंडन मिश्र की पत्नी ने काम सूत्र की चर्चा छेड़ी और कह दिता शंकराचार्य नो, या ते कहो चार ही विषय ने, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, पंजवा है ही नहीं। ते जे पंजवा है तो मैं इहदे नाल इहदी थोड़े नाल चर्चा करनी है। वह बेचारा बाल ब्रह्मचारी शंकराचार्य, काम दियां बारीकियां दा उसनू बोध नहीं सी। काम असीम हो सके अभ्यास कर करके उस सारी बिरती नूं राम दा रस बना चुकिया सी, समाधि लीन सी पुरुष। काम सीमा तो वध होवे ये उसकी जिंदगी च हो नहीं सकता सी। और काम का रूप बदल गया से, काम राम दे च बदल गया, काम रस राम रस बन गया, नाम रस बन गया। ये भी किसी वक्त मैं थोड़े सामने खोलांगा। तो इसनु कोई अनुभव नहीं सी। तो मंडन मिश्र की पत्नी कह लगी, या तो हार कबूल करो, अपने ग्रंथ मेरे हवाले करो, या जिहड़े सूत्र मैं रखे ने इहदा खुलासा करो, जवाब दिओ। पता है शंकराचार्य ने हाथ जोड़ के आखे, मैनू घट तो घट चार महीने की मोहलत दे दे, चार महीने बाद फिर चर्चा करांगे। तू मंडन मिश्र की पत्नी है, एक महान विद्वान दी, इतना मौका मैनू दे। एक स्त्री दे अगों वक्त दा ओ पुरुष जिहदे नाल लकब जुड़िया है जगत गुरु शंकराचार्य, वो पुरुष जिसने बौद्ध धर्म दे पैर हिंदुस्तान दे चुखाड़ के रख दिते, वो पुरुष जो महान विद्वान सी जिसने चार मठ बनाए ने, जिथों हिंदू धर्म बारे फैसला आउंदा है। शायद आपनू पता होवे, जद इंदिरा गांधी जगन्नाथपुरी दर्शन करन वास्ते गई, पुजारियां ने रोक दिता, तेरा पति फिरोज खान सी, इस मंदिर दे केवल जैन बौद्ध सिख ते हिंदू जा सकते हैं, पुजारियां ने रोक दिता। ये पेपर से टीवी थे, बच्चे बच्चे दी जबान दे उस वक्त चढ़ी गल।
इंदिरा कहण लगी तुसी धर्म दे मुखी नहीं हो, चार मठां तो पहले फैसला कराओ मैं जा सकती हां कि नहीं जा सकती। उन्हां चार मठां दे जो बैठे हुए ने मुखी उन्हां नूं शंकराचार्य कहा जाता है अज दे, क्योंकि शंकराचार्य की गद्दी ते बैठे ने, चार मठ उन्होंने बनाए सन। जिमें तख्त अकाल तख्त धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने बनाया, उत्थों दे सिरमौर नूं अकाल तख्त का जथेदार कहिंदे ने, वह चार जिहड़े मठ ने उन्हां दे मुखिया नूं अज भी जगत गुरु शंकराचार्य कहिंदे ने। अज भी चारां ने फैसला दे दिता, वैसे एक का फैसला भी काबिले कबूल होंदा है, चारां ने फैसला दे दिता नहीं जा सकते, खाली हथ वापस आना पे, शायद आपको पता हो मंदिर दे च नहीं जा सके, शंकराचार्य का हुक्म किंतु परंतु करने की कोई गल ही नहीं, किसी हिंदू ने किंतु परंतु नहीं की थी।

अकाल है, समय दिच नहीं है, काल दिच नहीं है, बाकी सब कुछ काल दिच है, समय दिच है, परमात्मा अकाल। किधरे ख्याल पैदा हो जाए एक कल्पना तो नहीं, तो साहब कहने नहीं मूर्त मूर्तिमान है, खुदी मूर्त हैगा। जे मूर्त है तो फिर किसे ने बनाया है, तो एकदम सतगुरु कहते ना आ जाओ, नहीं किसे तो भी नहीं जमया, उसनू किसे ने भी नहीं बनाया, उसकी बनतर किसे तो भी नहीं हुई। नानक का प्रभ आपे आपे, अपने आप तो आप ही है, आप ही ने आप साजे हो, आप ही ने रचे हो ना। तो फिर वो सहभंग है, स्वयं भू है, अगां चल के सतगुरु कहंदे ने वो गुरु है, गुरु कोई होर नहीं है, परमात्मा ही गुरु है। कि गुरु शब्द भी कल्ला है अपने आप विच, गुरु प्रसाद कट्ठा नहीं, प्रसाद अलग है। वो जो एक है वो अंकार है, वो जो एक है वो सत है, वो जो एक है वो नाम वाला है, वो जो एक है वो करता है, वो जो एक है अपनी कृत विच व्यापक है, वो जो एक है भय तो रहत है, वैर तो रहत है, वो जो एक है समय तो रहत है और जन्म तो रहत है, मूर्तिमान है। और उसने अपनी साजना आप की थी, वो एक सहभंग है, वो एक गुरु है, गुरु ज्ञान गुरु प्रकाश, वो एक ही ज्ञान स्वरूप है, वो एक ही प्रकाश स्वरूप है, वो गुरु है। बहार मुताला करिए, जिथे सब कुछ ईश्वर तो आया है, ज्ञान भी ईश्वर तो आया, परमात्मा तो आया। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते ने आद अंत एक है अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। आदि गुरु वेदा ने भी परमात्मा नो ही मने है, वो ही गुरु है। अगर मोहम्मद साहब कहते ने ये आयतां मेरे ते नाजल हुई ने, मैंने उच्चारण की, खुदा दी तरफों नाजल हुई ने, तो इहदा मतलब ज्ञान खुदा ने दिता, फिर थोड़ा ते ना होया, क्योंकि नाजल जो हुई अगर नाजल हुई ने तो फिर ये ज्ञान मोहम्मद साहब का नहीं है, ये तो खुदा का हो गया। धन गुरु नानक देव जी महाराज भी कहते ने बोल मेरे नहीं ने, जैसे मैं आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो। जैसे खसम दे बोल आए ने, मैं कह रहा जैसे जैसे खसम दी बाणी आई है, मैं जगत दे सामने रख रहे हैं, मेरे नहीं है। जे बोल सारे खसम देन तो ज्ञान सारा परमात्मा दा, ईश्वर दा। और जे ज्ञान परमात्मा तो आ रहे है तो फिर परमात्मा गुरु है। तो गुरु नानक देव जी कहते ना, हाँ मेरा गुरु मेरा परमात्मा ही है, अपरम पर पार ब्रह्म परमेश्वर, नानक गुरु मिलया सोई जियो, यही मेरा

महान ज्ञाता और जिसनों मैदान जंग दे भी कहने की जरूरत है, ए अर्जन तू एक निमित्त है, तू करता नहीं है। तू जो ये कहना है ए मेरा गुरु ए मेरे भरा इन्हों मार के मैं की खटना है, तू निमित्त है, तू कौन है मारन वाला, तू नहीं मार सकता। तू स्वभाव का क्षत्रिय है, सूरवीर है और नहीं लड़ेगा ता भी तेरे दिल दिमाग देते ऐसा बोझ रहेगा, तेरे अंदर लड़ाई जारी रहेगी, ये करना ही पड़ेगा। तू करता नहीं है, निमित्त है, और अपना कर्तापन एक पासे कर दे, इस जंग दे च भी तू परमात्मा नाल जुड़ जाएगा, युद्ध भी तेन समाधि लीन कर देगा। अगर तेरा कर्तापन तेरे नाल है तो तेरा त्याग भी तेन परमात्मा नाल नहीं जुड़न देगा, तेरा त्याग भी तेन ईश्वर नाल नहीं जुड़न देगा, क्योंकि तेरा कर्तापन मौजूद होगा उत्थे। ये गहरी गल अर्जन की पकड़ दे आ गई, उन्हें सुटे शस्त्र फिर चुक ले, प्रभु मैं समझ गया, भगवान मेरी समझ दिच आ गई, मैं पकड़ लिया थोड़े बोला। जो परमात्मा दे बोला नो सिद्धा पकड़े अवतार, तो जो परमात्मा दे बोल अवतारा दे राही पकड़ सके भगत श्रद्धालु संत भगत अवतार जिस मात्रा दे जगत दे चाहते ने उंगलियां ते गिन सकते हैं, भगत बहुत ने। हर कौम दे चोटी दे भगत काफी तादाद दे चोए ने। अवतार हर वक्त पृथ्वी ते मौजूद नहीं आउंदा, भगत हर वक्त आउंदे ने। हर जुग जुग भगत उपाया पैज रखदा आया राम राजे। जमीन दे ते हर वक्त अवतार नहीं आउंदे, अवतार उस समय आउंदे ने, कवि तुलसी कहंदे ने, जब जब होए धर्म की हानि बाहणे असुर अधम अभमाने, तब तब विवद धर प्रभु शरीरा हरे कृपा निद सज्जन पीरा। बहुत घोर अपराध पाप छा जाए तो ओ जैसे बहुती गर्मी बारिश नु जन्म दे देती है, इस तरह का घोर पाप किसी अवतार नु जन्म दे दे। परमात्मा दे सिद्धे बोल पकड़दा ते जगत नु सुणदा। और मैं ये भी अर्ज कर दिया किथे जगत अवतारा दे बोल नू पकड़ दे पूरा, थोड़े जिया फिर भी पकड़ देन उहदे नाल रोशनी हो जाती, उसने नाल काफी ठरम्मा हो जाता। कलगीधर पिता भी इस तरह लिखते ने, जब जब होए अरिष्ट अपारा, दसम ग्रंथ, जब जब होए अरिष्ट अपारा तब तब दे धरत अवतारा। उस वक्त कोई अवतार दे ही धारण करता है जब सारी सृष्टि देच अरिष्ट होवे, भाव गलत होवे, कुछ भी सही ना होवे, तो फिर कोई ऐसा अवतार जो सीधा अकाल पुरख दे बचना नु पकड़दा है और जगत दे सामने रखता है। ते अवतारा दे राही गुरुआ दे राही जिन्हां दी पकड़ दे च आ जांदे ने, वो भगत, वो गुरमुख, वो ब्रह्म ज्ञानी। तो चूंकि बोल ते परमात्मा दे ने, ज्ञान ते सारा परमात्मा दा है, तो गुरु नानक कहंदे ने परमात्मा ही गुरु है और कोई गुरु नहीं, ईश्वर ही गुरु है, वो जो एक है वो ही गुरु है। अखीर विच इस मूल मंत्र नु जिस ढंग नाल समाप्त कर देने, धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने प्रसाद है, गुर प्रसाद, प्रसाद और गुर, ये दो मजमून अपने आप विच इस तरह देने, थोड़ा जिहा मैं इन्हां नूं खोलना चाहना ताकि ज़हन विच ये गल पूरी बैठ जाए। पता नहीं कितना सिख जगत भटक रहा है, देहदारी गुरु चाहिदा है कि नहीं, कौन दसे कदी देही भी गुरु आउंदी है, अज है ते कल नहीं, इहदा मतलब गुरु मिट जांदा है, गुरु मर जांदा है, ते जो मर जांदा है वह गुरु सदीवी जीवन थानू किस तरह देवेगा, किस तरह देवेगा। गुरु ते शब्द है, गुरु ते ज्ञान है, ज्ञान गुरु आत्म उपदेशो नाम विभूत लगाओ,
किसे देही कोल भी जाओगे तो वो जो उपदेश कर रही है उपदेश नो हिरदे च वसाओगे कि उस देही नो। जे आखो देही नो हिरदे च वसाना है तो उपदेश सुनन दी लोड़ ही नहीं, की लोड़ है। जे उपदेश नो हिरदे च वसाना है ते ताई हिरदा बदलेगा तां ते फिर देही दी कोई कीमत ही ना रहेगी। देही दा उतना ही सन्मान जिवें किसी ने कोई कपड़े पहने अवन ते कपड़ियां दी कदर, कपड़ियां दा सन्मान भी फलाने दे कपड़े ने फलाने दे वस्त्र ने। जिवें रुमालियां दा असी सत्कार करदे हां गुरु ग्रंथ साहब दे रुमाले ने, पर हुण मैं अर्ज करा कि अखर ए भी रुमाले ने, कागज ए भी रुमाले ने, अखरां दे च जो ज्ञान है यही परमात्मा। ओरे दे चों गुरु नूं कढ़ना पैंदा, मक्खण शाह लबाणा बनना पैंदा, गुरु ते हर वक्त बोरे च। ये भी मैं अर्ज कर दे, बाई दे दारी गुरु बार बैठे सन ते हजारां लोग भुल जांदे सन, उन्हां नूं मत्था टेक के वापस हो जांदे सन, तसल्ली नहीं आउंदी सी किसे दी। मक्खण शाह लबाणा आया इहदे कोल अख सी, कहिंदा है रब दा कलाम अकाल पुरख दे बोल ते मैनूं किसे कोल नहीं दिखाई दित्ते। चलो ये साधक होणगे, संत होणगे, ये अवतार नहीं ने, ये नहीं ने, ये गुरु नहीं ने। चलो अभ्यासी होणगे, गुरु होण दा दावा इन्हां दा झूठा है। तो चूंकि ये दावा झूठा है तो शायद इन्हां दी बंदगी भी झूठी है। जो इस तरह के झूठे दावे करन किस तरह सच्चे हो सकदे। मक्खण शाह लबाणे दी सोचणी बकाले विच एक हलवाई तो पुछदा है इत्थे कोई होर भी है जो गुरु नानक दी गद्दी दा वारस होवे। उस हलवाई ने कहा सोढ़ी बंस दा एक तेगा कमला है, गुरु प्रताप सूरज दे जिस तरह लिखे है, एक तेगा कमला है भोरे च रहिंदा है, भोरे दे च है, बाहर नहीं आउंदा। वो जड़े बाई सन लिशके पुशके बार बैठे सन गदियां ला के, ये भौरे च गया है, दर्शन कीते ने, बोल सुने, उपर चढ़ के कोठे ते कहिंदा है गुर ला धोरे, गुर ला धोरे, जो मैं बोल सुने ने ये परमात्मा ईश्वर ने। गुरु ते हर वक्त भौरे च है, ये भी मैं अर्ज करा। अखरां दे भौरे च कढ़ना पैगा, अखरी नाम अखरी साला, अखरी ज्ञान गीत गुण गा, अखरी लिखण बोलण बाण, अखरां सिरसन जोग वखाण। इन्हां अखरां दे भौरे च कोई रब्बी जोत नूं कढे, कोई गुरु नूं प्रगट करे। जीवन दे च परमात्मा ते गुरु नूं प्रगट करना पैंदा है, ये भी अर्ज मैं करा। ना किधरे गुरु मिलदा है, ना किधरे इस तरीके नाल परमात्मा मिलदा है, प्रगट करना पैंदा जीवन दे च। अपनी हालत इस ढंग दी बनानी पैंदी है कि गुरु प्रगट होवे, अपनी हालत ऐसी बनानी पैंदी है कि परमात्मा प्रगट होवे। सुन उपदेश हिरदे बसाओ, मन इच्छे नानक फल पाओ। इस बाणी नु सुनो, शब्द नु सुनो, ते जैसे सुन के शब्द अंदर वसेगा बाहर परमात्मा प्रगट हो जाए। सारा जगत परमात्मा दा रूप दिखाई देगा। जो दी से सो तेरा रूप, गुण निधान गोविंद अनूप। ए विश संसार तुम देख दे हर का रूप है, हर रूप नदरी आया। इधर शब्द ने अंदर प्रवेश कीता, इधर सारा संसार निरंकार दिखाई देता। इधर गुरु नु सुनिया, इधर अखां ने परमात्मा वेखना आरंभ कर दिता। जे अखां नु अजे परमात्मा नहीं दिखाई दिता तो अखां ने अजे गुरु रूप परमात्मा नु सुनिया भी नहीं, क्योंकि गुरु वो जो बोल ने, वो जो शब्द ने परमात्मा दे ही ने। परमात्मा दे बोल ही अखां खोल सकते ने, जगत दे बोल संसार दे बोल साड़ी अखां नहीं खोल सकते, ये भी मैं अर्ज करते। पर अखां खुल सकदियां ने अगर साड़ा मन पूरी एकाग्रता नाल सुने, और जिस दिन सुनेगा मत विच रतन जवाहर माणक, जे एक गुर की सुख सुनी। एक भी सिखिया सुन ली, एक भी पंक्ति एक भी शब्द सुन लिया और अंदर वस गया तो गुण पार प्रगट हो जाएंगे, दया प्रगट हो जाएगी, प्रेम प्रगट हो जाएगा, ज्ञान प्रगट हो जाएगा,
आत्म दृष्टि प्रकट हो जाएगी, सारा संसार निरंकार दा रूप दिखाई देन लग पाएगा। इस तरीके नाल सतगुरु कहिंदे ने ओ गुरु है, अखीर दिच कहिंदे ने ओ प्रसाद है, ए अवस्था उसकी बख्शिश नाल बनेगी, तेरी मेहनत नाल नहीं, उसकी रहमत नाल बने, तेरे प्रयास नाल नहीं, उस दे प्रसाद नाल। अपने आप दिच ए प्रसाद शब्द चूंकि बहुत गूढ़ भाव अपने विच छुपाई बैठा है, इसका खुलासा कल दिन दे समय मैं थोड़े सामने करने की कोशिश करांगा। प्रसाद है साड़ी मेहनत नहीं, उदी रहमत है, साड़ा प्रयास नहीं, उदा प्रसाद है। क्योंकि एक भी भगत ने ऐसा नहीं आख्या कि मेरे प्रयास नाल हे परमात्मा तू मैनू मिलिया है, मेरी मेहनत नाल मैं तेनू प्राप्त कीता है, कहिंदा नहीं तू मिले है तेरी रहमत, मेरी मेहनत नहीं, तू मिले है मेरा प्रयास नहीं, तेरा प्रसाद। लेकिन फिर भी भगत बहुत प्रयास कर देन, अमृत वेले उठना है, जप करना है, तप करना है, नियम पूर्वक इशनान करना है, सब कुछ कर देना है। जिन्हें नाम ध्याया गए मुशक्कत गाल, बड़ी गाल ना गाल देन, बड़ी मुशक्कत कर देने, पर मुशक्कत कर करके एक ही गल का पता चलता है कि मुशक्कत नाल नहीं मिलेगा, बस इन्नी गल। मेहनत कर करके एक ही ज्ञान मिलेगा कि मेहनत नाल नहीं मिलेगा, प्रयास कर करके एक ही पता चलेगा एक गल का कि प्रयास नाल नहीं मिलेगा, वो जद मिलता है उदा प्रसाद, वो जद मिलता है उदी रहमत, उदी किरपा। साडा कर्म नहीं उदी किरपा, साडा प्रयास नहीं उसका प्रसाद, साडी मेहनत नहीं उसकी रहमत। अगर मेरी मेहनत नाल मैनू परमात्मा मिल गया तो मेरी मेहनत उसकी कीमत है, इतनी मैं मेहनत करांगा मिल जाएगा, किसी नूं भी मिल जाएगा, फिर परमात्मा अमुल नहीं है। फिर ये शब्द कहने बनते नहीं, कीमत पाए ना कहा जाए, कहने वाले तेरे रहे समा, तेरी कीमत नहीं है, तेरा कोई मुल नहीं है, मेरा कोई भी कर्म तेरा मुल नहीं है, मेरा अमृत वेले दा उठना तेरा मुल नहीं है, मेरा वाहेगुरु वाहेगुरु दा जप करना तेरा मुल नहीं है, तीर्थां दा इशनान दान पुन सेवा ये तेरा मुल नहीं है, राम राम दा रटन ये तेरी कीमत नहीं है। तू मिले है मेरी मेहनत नहीं तेरी रहमत, तू मिले है मेरा प्रयास नहीं तेरा प्रसाद। पर जद मिले है प्रसाद ही है, जद मिले है उदी रहमत ही है, तो मेहनत करने दी की लोड़ है। यकीन जानो मेहनत कर करके ही पता चलता है, नहीं पता चलता, मेहनत कर करके इतना ही पता चलता है कि मेहनत नाल नहीं मिलेगा। गुरु नानक इसनु इस तरह कहने ने, गाल ना मिले हो, सेव ना मिले हो, मिले हो आए अचिंता, मल्ला पहला। गुरु नानक दी बाणी, गाल नाल नहीं मिले, सेवा नाल नहीं मिले, दान नाल नहीं मिले, पुन नाल नहीं मिले, कोई दान करोड़ा दा उसकी कीमत नहीं, कितनी सेवा जीवन भर दी उसकी कीमत नहीं, कितना जप जिंदगी भर दा उसकी कीमत नहीं, नहीं मिलता। ना कीते जप नाल मिलता, ना दिते दान नाल मिलता, ना कीती सेवा नाल मिलता। फिर किस तरह मिलता है? वो मिलता है अचनचेत। गाल ना मिले हो, सेव ना मिले हो, मिले हो आए अचिंता, अचनचेत मिले। तो अचनचेत किस तरह मिल गया? उदा प्रसाद, उदी बख्शिश, उदी रहमत, मेहनत नहीं उदी रहमत। आया ये रहमत आखिर होंदी होवेगी, कोई ढंग ते है, कोई तौर तरीका ते है। इन्हां गुंजलां नूं गुरबाणी ने जिस ढंग नाल खोले है, मैं कल आप जी दे सामने रखण दी कोशिश करांगा। और समय नूं मुख रखदे होया इंज कह लो कल समाप्ति कर देंगे। उंज ये मूल मंत्र
धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की सारी बाणी मूल मंत्र की व्याख्या। दुनिया के सारे धर्म ग्रंथ इंज कह लो मूल मंत्र का टीका ने और कुछ नहीं है। ईश्वर के सारे बुनियादी गुण मूल मंत्र दे आ गए ने। वो एक है, वो ओंकार है, उसकी उत्पत्ति पालना नाश हो रहे, वो एक सत है, वो जो एक है उसका नाम है, उसे दा ही नाम है, अमिट है, बाकी किसी का नाम नहीं। सब नाम मिट जाते हैं, समा पा के मिट जाते हैं। वो जो एक है वो ही करता है, और जो एक है अपनी कृत दे च बैठा है, अपनी कृत तो वक नहीं है। वो जो एक है उसके स्वभाव दे च भय नहीं है, उसके स्वभाव दे च वैर नहीं है, उसकी होंद दे च काल नहीं है, समा नहीं है, वक्त नहीं है। वो जो एक है बकायदा मूर्तिमान है, और वो जो एक है उसनु किसी ने बनाया नहीं, अजो नहीं है। वो जो एक है सैभंग है, अपने आप तो आप ही विस्तृत होया है, अपना बसारा उसने आप ही कीता है, आप ही ने आप साजियो, आप ही ने रचे हो ना। वो जो एक है वही गुरु है, वो जो एक है वही प्रसाद। इस सारी व्याख्या उस एक दी, फिर सारे गुरु ग्रंथ साहब की बाणी उस एक दी व्याख्या, दुनिया के सारे धर्म ग्रंथ उसकी व्याख्या, जेडे मूल गुण धन गुरु नानक देव जी महाराज ने मूल मंत्र दे बयान किए ने, गुर प्रसाद, इसका थोड़ा जहा खुलासा कल आप जी के सामने रख के इस दौर दे जो आप जी नाल संजोग बनिया दो हफ्तिया का कल जो है समाप्ति करांगे। रोज आप समा कटते रहे, सतगुर रहमत करन कि गुरुद्वारे आन दा ख्याल रोज आवे थोन। मैं इतना अर्ज कर दिया, जिवें आदमी पुत्रां कोल बैठता है, मित्रां कोल बैठता है, पत्नी कोल बैठता है, पति कोल पत्नी बैठती है, भरा कोल भरा बैठता है, जैसे मित्रां कोल बैठते हैं, इसी तरीके नाल गुरु कोल आके बैठना चाहिए। और थोड़ा जहा मैं अपने अनुभव के आधार से कह दिया, नहीं कीर्तन हो रहा ता भी ना सी, बैठना भी लाभकारी। इतना भाव होवे कि असी गुरु नानक दे कोल बैठे, असी कलगीधर दे कोल बैठे, ये बैठना भी लाभकारी हो जाएगा। सुनना तो लाभकारी है, बैठना भी लाभकारी, लेकिन इतना तो करना ही पड़ेगा ताकि मन दे भाव इस तरह के जो है बनन। खैर, बाकी विचार कल थानू जो है लेटना करा। एक दफा मैं फिर दोहरा दिया, वो गुरु है, सारा ज्ञान उसे तो आ रहा है, सिर्फ सूरज की रोशनी उसे तो नहीं आ रही, ज्ञान की रोशनी भी उसे तो आ रही है। और वो प्रसाद है, उस दे च करोपी नहीं है, उस दे च सराप नहीं है, वो जालम नहीं है, रहमान है, रहीम है, वो करीम है, वो प्रसाद है, वो बख्शिंद है, वो दयालु है, वो कृपालु है, वो कठोर नहीं है। खुदा ऐसिया सजावां देंदा है, ऐसिया करणियां सजावां, जिथे जिथे जो कुछ भी लिखे है यकीन जानो गलत लिखे है, गुस्ताखी माफ। कोई नहीं देता किसी को सजाएं, सजा बन के आती हैं अपनी खताएं, ये भी मैं अर्ज कर देना। ना जगत किसी नूं कोई सजा देंदा है, ना परमात्मा, साडे अपने लक्षण ही सानू सजा दे देंगे, साडी अपनी करनी ही सानू सजा दे देंगे, असी अपने कीते करके ही जो है दुख पा लेंगे। परमात्मा दुख देण वाला नहीं है, अगर दुख देण वाला है तो फिर उनू रहीम कहण की लोड़ नहीं है, उनू करीम कहण की लोड़ नहीं है, उनू रहमान कहण की लोड़ नहीं है, उनू प्रसाद कहण की लोड़ नहीं है, उनू कृपालू ते दयालु कहण की लोड़ नहीं है। वो ते इतना दयालु ते कृपालु है, इतना प्रसाद है। ईरानी सूफी संत हाफिज कहंदे ने, सद साला बा इम्तिहान गुनाह फाहम करद, ऐ खुदा 80 साल दी उम्र च इसने ए बोल रचे ने। कहिंदा तू मैनू 100 साल तक जे जिंदा रह रखिया, 80 साल दा ते मैं हो गया, ते 80 साल तक मैं गुनाह ही कीते ने, ते जे बाकी होर तू मैनू 20 साल दी जिंदगी दित्ती ना, तो मैं गुनाह करांगा, पुन नहीं करने, पाप करने ने।
ਸਦ ਸਾਲਾ ਬਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਗੁਨਾਹ ਖਵਾ ਹਮ ਕਰਦ। ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਇਹ ਬੋਲ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਫਕੀਰ ਬੜੇ ਨਿਰਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਫਕੀਰ ਸੀ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਫਕੀਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਚੋਟੀ ਦਾ ਫਕੀਰ ਹੈ। ਉਂਝ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਫਕੀਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਸੀ, ਉਮਰ ਖਿਆਮ ਸੀ, ਫਿਰਦੋਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਹਾਫਿਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਏ ਸਨ, ਸਰਮਦ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਹਾਫਿਜ਼। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਰਿਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਮੁਨੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਗਿਆਨੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਭਗਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਸੰਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਅਵਤਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਈਰਾਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਫਕੀਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਫਿਜ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਨਾਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਦ ਸਾਲਾ ਬਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਗੁਨਾਹ ਖਵਾ ਹਮ ਕਰਦ। ਐ ਖੁਦਾ, ਜੇ 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਿਛਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੁਨਾਹਾਂ ਚ ਬਤੀਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰਾਂਗਾ, 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਗਰ ਤੂੰ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂ? ਐ ਖੁਦਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈ ਇੰਨਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕਿ ਤਾ ਜੁਰਮ ਮਨ ਅਸਤ ਬੇਸ਼ ਯਾ ਰਹਿਮਤ ਤੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਲੜੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗਾ ਆਪਣੇ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਗੁਨਾਹ, ਤੋਲਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਪਲੜੇ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗਾ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਗੁਨਾਹ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਲੜੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗਾ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਅਨੁਭਵ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਹਿਰਦਾ ਬੋਝਲ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਰਹਿਮਤੇ ਸ਼ਾਹਾਂ ਕਾ ਜਬ ਦੇਖਾ ਹਸ਼ਰ ਨੇ, ਚੀਖ ਉਠਾ ਹਰ ਬੇਗੁਨਾਹ, ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰੋ ਮੈਂ। ਤੂੰ ਇਤਨਾ ਬਖਸ਼ਿਨ, ਇਤਨਾ ਦਿਆਲੂ। ਇਹ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਅਨੁਭਵ ਚ ਆ ਗਈ ਇਹ ਗੱਲ, ਬਾਕੀ ਦੇ 20 ਸਾਲ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਾਪ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਨੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਰਹਿਮਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਪਾਪ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਪਾਪ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਝ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਕਿਧਰੇ ਇੰਝ ਨਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਚਲੋ ਬੜਾ ਕਿਰਪਾਲੂ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਨਰਥ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਧਰੇ ਇੰਝ ਪੁੱਠੀ ਗੱਲ ਨਾ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਲਟ ਨਾ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਦ ਸਾਲਾ ਬਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਗੁਨਾਹ ਖਵਾ ਹਮ ਕਰਦ। ਐ ਖੁਦਾ, ਬੀਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗੁਨਾਹ ਕਰਾਂਗਾ, ਫਿਰ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਲੜੇ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਤਰਾਜ਼ੂ ਪੁਰਾਣਾ, ਇੱਕ ਪਲੜੇ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਲੜੇ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗਾ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ ਰਹਿਮਤ। ਐ ਖੁਦਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਇਬਾਦਤ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਤਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣਾ ਹੋਵੇ, ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਜਪੋ, ਉਸਨੂੰ ਹੀ ਜਪੋ। ਅਗਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਤੇ ਇਤਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਕਿੱਥੇ, ਚ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਨਾ ਰੱਖ ਪੁਰਖਾ, ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਭ ਕੁਝ ਧੋ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੱਖ ਮੜੀਆ ਕਰ ਇਕੱਠੇ ਏਕ ਰਤੀਲੇ ਭਾਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੰਗਾਰੀ ਲੱਖਾਂ ਮਣ ਲੜਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਸਾੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਪਲ ਭਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਚਿਨਕ ਤੇਰੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਚਿੰਗਾਰੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਤੂੰ ਇਤਨਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਉਸ ਤੇ, ਉਹ ਰਹੀਮ ਹੈ, ਉਹ ਰਹਿਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਕਰੁਣਾਕਰ ਹੈ, ਉਹ ਦਇਆ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਤੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ, ਤੂੰ ਰਹਿਮਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਰਹੀਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਦਇਆਲੂ ਹੈ,
ਤੂੰ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਹੈ, ਕੁਛ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਇਤਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਰੋਜ਼ ਆਪ ਸਮਾਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਖੀ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇ ਸੇਠੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਰ ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਔਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਕੱਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਪਰਸਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ। ਦਾਸ ਦੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।

परम सम्मान योग साहिब सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी हजूर दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सत्कार योग महापुरख संत बाबा जवाहर सिंह जी और संत बाबा तारा सिंह जी होना दी बरसी दी याद अंदर धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दी अमृत बाणी नूं आप जी श्रवण कर रहे से। सन्मान योग भाई साहब भाई जसबीर सिंह जी पौंटा साहिब वालिया ने हजूर दी बख्शीश नाल अपनी रचना तो सतगुरु दे अमृत बचन कीर्तन और विचार असानू श्रवण कराई। सत्कार योग बाबा सतनाम सिंह जी उन्होंने जो शब्द कहे ए उन्हां दी गरीब निवाजी है। धन गुरु रामदास जी दे पवित्र दरबार दे अंदर दिन रात गुरु चरणा विच समर्पित ने। आओ धन गुरु ग्रंथ

0: मुझे दर्दे इश्क है और इश्क है मौला के साथ। तेनू की पता जिस मर्ज की जुस्तजू में नब्ज पे रखते हो खात, मुझे दर्दे इश्क है और इश्क है मौला के साथ। ए दर्दमंदा दे बोलने बाणी विच जिन्ना जिन्ना नू बिरखा दी दर्द उठी ओना कुठिया कोया ने उस दर्द विच फिर रब्बी गीत गाए। बाबे फरीद अंदरे दर्द सी ते ओना ने दर्द नू पुकार के क्या रब जी के देखो मेरी एक हालत चिंत खटोला वाण दुख आ दर्द। चिंत खटोला वाण दुख बिरह विशावन लेफ एओ हमारा जीवना तू साहिब सच्चे वेख। दूजे नू की पता साडी दर्द दा ओना अंदर दर्द उठी ओना शब्द कहे तन सुक्का पिंजर थिया तलिया खुंडा काग अजे सो रब ना बौड़ियो देख बंदे के पाग। उस दर्दमंद महापुरख ने कहा के कागा करंग टंडोलिया सगला खाया मास ए दो नैना मत शुगो पिर देखन की आसो एक दर्द कह। कबीर साहब अंदर दर्द पैदा होया उन्हें शब्द बड़े भाव पूर्त गए पंत निखारा कामनी लोचन भरी ले उसासा उरना भिजै पग ना खिसे खर दर्शन की आसा उडो ना कागा कारे बेग मलीजे अपने राम प्यारे। ओ दर्द उठी नामदेव अंदर मैं बौरी मेरा राम पतार रच रच ताको करूं शिंगार भले निंदो भले निंदो भले निंदो लोग तन पन तन मन राम प्यारे जोग। वैगुरु मेर करे पर याद रखियो के दुनिया दी दर्द उठे ओ कई वरी मौत नू जन्म दें दिए रब नू मिलन दी दर्द उठे ते ओ अमोलक जीवन नू जन्म दें दी। फिर बेनती समझियो इस दर्द नू दुखांत ना समझना इस दर्द नू अंदर दी घाट ना समझना। वैगुरु कितने कु भागा वाले ओ नेत्र ने जिन्ना नेत्रां विच तेरी याद दे अथरू निकल दे। इत एक बेनती उदाहरण मैं देना वा तुसी बीबियां माइयां भैणां बैठियां जे इस मेरे शब्द नू ए मत समझियो वासना वल मत खिचियो के जदों माता दे उदर विच संतान निवास कर दीए ए कैसी मिठी दर्द है। अपने बच्चे नू अजे देखिया नहीं पर जन्म तो पहला मां अपने पुत्र दे भविख दे सुपने लैंदी। बाबा जी ने बाणी च कहा कि ज्यो जननी गर्भ पालती अजे बच्चा नहीं ज्यो जननी गर्भ पालती सुत की कर आसा सुपने लैंदी है वड्डा होए तन खाट दे कर भोग बिलासा। उसने अपनी कुख च उस दर्द नू खंडाया ते ज्यों ज्यों ओ संतान दा विकास हुंदा त्यों त्यों माता दी रात दे नींद भी चली जांदी है। देखो तुसी ओ है दर्द बच्चे दे जन्म तो पहला मां दी नींद भी चली गई पर जिस वेले मां ने अपने बच्चे नू जन्म दिता ते ओदे गले विचों ओदे अंदरों एक चीख एक आवाज निकली ओ अखां च पानी लैके रोंदी भी ए कुरलांदी भी ए बच्चे नू दे जन्म देन लग्या ओदियां चीखां सुनियां नहीं जांदियां पर दुनिया विच कोई ऐसी दवाई नहीं कि जेड़ी चीख मार दे कोई बंदे नू एक खिन विच खासा दे देवे। जन्म वेले दर्द नाल चीख रही है ते जदो पुत्र छाती ते लटाया जांदा है चीखां मारदी हुई हसन लग पैंदी। दर्द है पर चेते रखियो उस दर्द ने एक खिन च किड्डे वड्डे सुख नू जन्म दे दिता। एक खिन पहला जिदियां अखां च पाणी जिदे गले विचो दर्द जिदे बोलां विचो कोई शब्द नहीं केवल कुरलाना पर एक खिन बाद उसे बच्चे नू जन्म देन तो बाद मां दे अंदर एक खुशी एक विगास है। दुनिया दे दर्द दुखांत नू जन्म दे के जांदे ने पर वाहिगुरु मेर करे साईं दे प्यार दा दर्द अंदर विकास विगास नू जन्म देंदा। असी जिस संपर्दा दे महापुरशां नू ਅੱਜ ਯਾਦ ਪੈ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਾਣਾ ਸਭ ਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ, ਪਰ ਜਾਣ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਕਿਉਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕੁਛ ਹੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿਣਗੇ ਜੋ ਕੋਈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਮਾਇਆ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਬਲ ਚੱਲੇਗੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ, ਉਹਦੇ ਧਨ, ਉਹਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਵਕਤ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਵਿਦਵਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਕਰਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਨਾਈਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਯਾਦ ਆਉਣਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਯਾਦ ਆਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯਾਦ ਹੀ ਕਮਾਈ, ਯਾਦ ਹੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕੁਛ ਰਹਿਮਤ ਭਰੇ ਬਚਨ ਕਹਿਣੇ ਸੰਬੰਧੀ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚਲਾਣਾ ਸ਼ਬਦ, ਮੌਤ ਸ਼ਬਦ, ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇਮ ਐਸਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਆ ਜੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਏਕਤਾ, ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੁਣ ਹੈ, ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਸਮਾਨਤਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਹਰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਪਦਵੀ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਲੋਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨਾ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੱਤ ਦੀ ਤਲੀ ਤੇ ਪੈਸਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੱਤ ਦੀ ਤਲੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਮਸਤਕ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕੇਵਲ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਮਸਤਕ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਲੇਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾ ਸਕਦੀ, ਦੁਨੀਆਂ ਵੀ। ਬੇਨਤੀ ਸਮਝਿਓ ਮੇਰੀ, ਕੀ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਏਕਤਾ ਸੁਰਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ, ਉਲਾਮਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਵਿਡਾਣਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਚੋਜ ਨੇ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਚੋਜਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕੇਗਾ? ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਸਭ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਵਿਡਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਸੁਣਦਾ, ਆਪੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਜੀਆਂ ਆਪੇ ਪੂਰਨ ਦੇ, ਇੱਕ ਨੀ ਦੁੱਧ ਸਮਾਈ ਹੈ ਇੱਕ ਚੁੱਲੇ ਰਹਿਣ ਚੜੇ, ਇੱਕ ਨਿਖਾਲੀ ਪੈ ਸਵਣ ਇੱਕ ਉਪਰ ਰਹਿਣ ਖੜੇ, ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇਗੀ? ਇੱਕ ਸਿਆਲ ਵਿੱਚ ਰਜ਼ਾਈ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ, ਕੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਹੋ ਸਕੇਗੀ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਉ ਦੀਨੇ ਪਾਟ ਪਟੰਬਰ, ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਾਉ ਪਲੰਗ ਨਿਵਾਰਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜੇ ਕੀਮਤੀ ਪਲੰਗ ਨਿਵਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗਠੜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫੁਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਕਿਉਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਵਿਛਾ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਇੱਕ ਪਲੰਗਾਂ ਸੁੱਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਰਾਲੀ ਪੈ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਚੋਜ ਤੂੰ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਾਹੂ ਦੀਨੇ ਪਾਟ ਪਟੰਬਰ, ਕਾਹੂ ਪਲੰਗ ਨਿਵਾਰਾ, ਕਾਹੂ ਗਰੀ ਗੋਦਰੀ ਨਾਹੀ, ਕਾਹੂ ਖਾਨ ਪਰਾਰਾ। ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖ, ਐਰਿਕ ਵਾਦ ਨਾ ਕੀਜੈ ਰੇ ਮਨ, ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਕਰ ਲੀਜੈ ਰੇ ਮਨ। ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਸਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਸੁਭਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਿਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਉੱਥੇ ਦੋ ਮਨਾ ਸੇਮ ਏਕ ਸੋ ਆਹੀ, ਪਰ ਆਮ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੰਦੇ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, जे आर्थिक पक्षों दोनों इको जे नहीं ते सुभा करके भी दोनों इको जे नहीं। गुरु अर्जुन देव जी का सुभा ते बाबे पिरचिए दे सुभा जमीन आसमान का अंतर है। सुभा करके कदी भी एकता पैदा नहीं हुई। तीसरी बेनती, एक बंदे दे खत दे निशान चक्कर चेन दूसरे दे नाल मिलते नहीं। भाई साहब बाहर जाते हैं हुण तां इत्थे भी अमेरिकन अंबैसी भी जदों कोई वीजा लैण जांदा है ते उहदे फिंगर प्रिंट्स लै जांदे ने, उहदियां उंगलां दे निशान लै जांदे ने। बंदिया अखां चेंज कर सकने, चेहरा चेंज कर सकने, तस्वीर चेंज कर सकने, पर हत्थां दे निशान चेंज नहीं होणगे। चेते रखी तू केवल मशीन नाल देखे ने, पर शुक्र उहदा कर जिने इन्नी दुनिया पैदा कीती, एक दा निशान दूजे नाल नहीं मिलदा पिया। किहो जिहा चित्रकार है मेरा वाहिगुरु, चचा रचित चित्र है भारी, तज चित्रै चेतो चितकारी, चित्र बचित्र अह अवचेरा, तज चित्रै चित राख चितेरा। ओ खत्थां दे निशान लैण वालिया, तेरा ता कंप्यूटर इनू साम के बैठा है, उस रब नू देख जिन्ने निकियां निकियां लकीरां पैदा कर दित्तियां, उहदे वर्गा कौन है। आर्थिक पक्षो समानता नहीं, सुभा करके समानता नहीं। रंग कोयल दा भी काला है ते रंग कां दा भी काला है। कां बनेरे ते बह जाए लोग कहिंदे इहनां नूं उड़ाओ, ते कोयल कदी घरां ते नहीं बहिंदी, ओह तां बाग विच बोलदी है। कां बोले लोग उड़ांदे ने ते कोयल बोले खामोश होके सुणदे। सुभा इक नहीं, बोली इक नहीं, बिरखा है ते सब जंत इकट्ठे, इक तत्ते इक बोलन मिठे परमात्मा ने पैदा किते ने। चक्र चिन्ह करके असी एक नहीं। जेड़ी अगली बेनती मैं करनी चाहना, आर्थिक सुभा पक्षों चक्र चिन्ह करके एक सुरता नहीं, पर एक अक्सुरता रब ने पैदा कीती। ओ ना तो महल्या विच पैदा हो सकी, ना ओ किसे होर थां ते पैदा हो सकी। वो अक्सुरता रब ने पैदा की जेड़ी शमशान घाट दे कि छड़ दे थले पैदा हुई। वो अक्सुरता की है, कब्रस्थान विच अक्सुरता है। याद रखो, धन किसे कोल वध जां घट, सुभा किसे दा चंगा जां माड़ा, चक्कर चे ना मिलन, पर याद रखियो मौत एक ऐसी रब ने पैदा की जिन्हें समानता पैदा की है। जेड़ा जमया उन्हें दुनिया तो जाड़ा जरूर है, यह समानता है। पर जो भाई सबना शब्द कह मैं ओदी व्याख्या कर लगा, असी ये बचन पढ़ने हैं। मौत ने समानता पैदा की थी, ठीक है, ताकतवर नू चंदन दी लकड़ नाल फूक दिता गया, आम बंदे नू सादियां लकड़ां नाल संस्कार किया गया। पर एक गल चेते रखियो, लकड़ां वख हो सकदियां ने, हजूम इकट्ठ पिछे तुरन वाले किसे पिछे सौ किसे पिछे हजार हो सकदे, पर एक गल सारियां दी बराबर है कि जदों अग लगदी है सड़न तो बाद शरीर सारे सवा इको जे हुंदे। ए नहीं भी चंदन नाल फूके हुए राख नहीं हुंदे सोना बन जांदे ने, ते सादी लकड़ नाल फूके हुए सवा बनदे ने। लकड़ घ्यो जितना मर्जी पा लै, पर अखीर ते जे रह जाएगी ते ढेरी केवल राख दी रह जाएगी। बराबर तां आ गई, पर गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी इस तो अगे होर बचन कीता। कहन लगे इशनान एक पानी नाल हो सकता है, शमशान भूमि एक हो सकती है, अग एक हो सकती है, मौत शब्द सब लई एक हो सकता है, पर मरण तो बाद फिर एकता नहीं, क्योंकि रंग रतड़े साईं दे घर नूं चले जांदे ने ते रब तो विछुने हुए जिहड़े ने जन्म ते मरण भी चले जांदे। अक्सुरता फिर भी ना हुई। बाणी च शब्द तुहानूं सब नूं चेते वे, मैं सिर्फ उन्हां को प्रमाण अर्ज कर देना, ऐसो ए संसार पेखना रहन ना को पई खैरे, सब ने जाने। ऐसो ए संसार पेखना रहन ना को पई खैरे, सूदे सूदे रेग चलो तुम नतर को तक्का दवाई खैरे। बारे बूढ़े तरुणे भैया सब को जम ले जई है रे। भावे असी अज शब्द वरतने, पता नहीं गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह हर एक नू सोझी बख्श अपने ज्ञान दी। किसे दी मौत होवे सी कहने अजे समा नहीं सी, सोची दा मना ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਜੇ ਸਮਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ। ਸਮਾਂ ਸੀ ਤੇ ਤਾਂ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਰੇ ਬੂਢੇ ਤਰੁਣੇ ਬਈਆ ਸਭ ਕੂ ਜਮ ਲੈ ਜਈ ਗਏ ਰੇ, ਮਾਨਸ ਬਪਰਾ ਮੂਸਾ ਕੀਨੋ ਮੀਚ ਬਲਈਆ ਖਈ ਖੈ ਰੇ, ਤਨਵੰਤਾ ਅਰ ਨਿਰਧਨ ਮਨ ਈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਛੂ ਨਾ ਕਾਨੀ ਰੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਰਾਜਾ ਪਰਜਾ ਸਮ ਕਰਮਾ ਰਹਿ, ਆਵੇ ਬਰਾਬਰਤਾ। ਮੌਤ ਨੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਲਿਆਂਦੀ, ਰਾਜਾ ਪਰਜਾ ਸਮ ਕਰ ਮਾਰੇ ਐਸੋ ਕਾਲ ਬਿਡਾਨੀ ਰੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਖਿੰਡਦੀ ਦਿਸੀ, ਕਿਉਂ? ਹਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਜੋ ਹਰ ਪਾਏ। ਕੈਸੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਲਤੀਫ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰੀਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰੀ ਕਿ ਸਮ ਕਰ ਮਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਜੋ ਹਰ ਪਾਏ ਤਿਨ ਕੀ ਕਥਾ ਨਿਰਾਰੀ ਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ, ਜਾਣ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਹੇ ਨਾ ਕਬੂ ਮਰਤੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਘਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ ਹੈ। ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਜੰਮਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥੀ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਨਾ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਈ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਪੂਰੇ ਦੀ ਕਥਾ ਅਧੂਰਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਿੰਨ ਕੀ ਕਥਾ ਨਿਰਾਰੀ ਰੇ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੰਤ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੋ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆਪਨੇ ਸਭ ਨੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਨਾ ਸਮਝਿਓ। ਗੁਰਮਖੋ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ ਸਰਵਣ ਕਰਿਓ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਏ, ਗੁਰੂ ਕਦੀ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਿਓ, ਗੁਰੂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚਾਹੇ ਜੰਜੂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇ, ਚਾਹੇ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਯੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇ, ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜੜਾਂ ਵੱਢਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਿਰਦ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੀਮਤੀ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਆ ਆਤਮਾ ਦਾ ਜਨੇਊ ਪਾਲ ਹੈ। ਸਮਝਿਓ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂ ਦੱਸਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੇਡ ਕਿ ਦਇਆ ਕਪਾਹ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸੱਤ ਵੱਟ। ਵਿਰੋਧੀ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰ ਮਸੀਤ ਸਿਦਕ ਮਸੱਲਾ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਕੁਰਾਨ। ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸ਼ਰਮਪਤ ਝੋਲੀ ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰੇ ਵਿਭੂਤ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਸਤਾਦ ਝਿੜਕਦਾ ਉਹਦੀ ਝਿੜਕ ਵਿੱਚ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਝਿੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾਲੂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਧ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗੰਮ ਅਗਾਧ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੋਏ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਜੋ ਕਹੇ ਸੋ ਮੁਕਤਾ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਅਗੰਮ ਅਗਾਧ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਜੋ ਕਹੇ ਸੋ ਮੁਕਤਾ ਹੋਏ। ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਸੁਣ ਮੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਸੁਣ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਸੁਣ ਮੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਇਹਨੂੰ ਕੰਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣ। ਤੇ ਸੁਣ ਸ਼ਬਦ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਾਨੇ ਚ ਗੱਲ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ। ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ਚ ਨਾ ਪਾਈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਕੀ ਜੀ? ਸੁਣ ਮੀਤਾ ਨਾਨਕ ਬਿਨਵੰਤਾ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਧੂ ਲਈ ਇੰਨੇ ਉੱਚੇ ਸ਼ਬਦ? ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਸੁਣ, ਬਿਨਵੰਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆ ਸੁਣ। ਕੀ ਜੀ? ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਅਚਰਜ ਕਥਾ। ਸਿਰਫ ਆ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਅਚਰਜ ਕਥਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਅਚਰਜ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਅਗੰਮ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਦੀ ਖੇਡ ਅਚਰਜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਖੇਡ ਵੀ ਅਚਰਜ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਥੱਲੇ ਸਾਧੂ ਦੇ ਬਚਨ। अगम अगाध पार ब्रह्म सोए जो जो कह सो मुक्ता होए सुन मीता नानक बिनवंता साध जना की अचरज कथा। उस सुखमनी साहब दा भाई साहब भाई हरजिंदर सिंह उन्होंने ने एक शब्द मैनु एक बारी कहा, क्योंकि महंत साहब जी दे जदो दर्शन हुए पहली बारी इत्थे एक बरात आई सी, बाबा जी हुणा नूं पता कौन है, बाबा प्रतपाल सिंह जी, बाबा अजीत सिंह जी, कि महंत जी कोल माला सी मोटे मणकियां वाले, दर्शन कीते ते ए जे आपां गल करनी पैनू ए ना किते कोई समझ जाए, क्योंकि अज साडा अंदर इन्ना कुछ सुंगड़ चुका है असी गुरु प्यारियां दी गल सुन नूं तैयार नहीं। देखो गुरु ग्रंथ साहिब ते सिद्धांत है, ते सिद्धांत दा जदों कोई जीवन जींदा है आर्कीटेक्ट केवल नक्शा तैयार करदा है, रिया उथे जांदा है जिथे इमारतां बनदियां, ए तां जीवन दसन दे नक्शे ने। तू इस तरह तुरी इस तरह चली ते जे असीं कहीए जी असीं नक्शा तां मनने आ पर नक्शे विचों पैदा हुई इमारत नूं असीं मनन नूं तैयार नहीं, अजे हालत बन गई। नक्शा असीं मन्नांगे आर्कीटेक्ट तैनूं भी मन्नांगे, पर जे इस नक्शे विचों इमारत बन गई असीं नहीं मननी। बस सिख दी अज हालत चुकी जे वो कमाई वाले दी गल भी सुननू तैयार नहीं। मैं बेनती करा जेड़ा नक्शा तैयार होया कमाई वाले इमारतां खड़ियां कर दे कि जीवन ऐसा हुंदा है। आप देखो महापुरखां दे जीवन विचों उन्हां दे हाथ च माला सी, बेनती मैं नमस्कार कीती उन्हां त्रुठ के माला दित्ती। भाई हरजिंदर सिंह उन्हां नूं एक शब्द कहे के सुखमनी साहब दा पाठ करिया करो। मंत साहब ने वो उन्हां दसे ते नाल कहन लगे बैराग चाहे सुखमनी साहब पढ़न वाले नूं गुरु अर्जुन देव लैण हुंदे कि ना कु अंदर टिकिया। फिर देखो इस घर विच इस दरबार विच जेड़ी उन्हां सेवा कीती उस भावे दो चार पत्रे ही जीवन लिखे है पर उन्हां पंज सत लाइना विचों सब कुछ मिल जांदा है। जे देखिए तां महंत साहब आए, महंत जवाहर सिंह जी लैके आए, बीमार सन, आप सब नूं पता है बिठाया किथे, लंगर दे भांडिया विच भांडे मांजो, भांडे मांजदे रहे, सेवा करदे रहे, तुसी अखां नाल सब कुछ तकिया पर उन्हां दी साखी नूं आपां याद करिए। इस संपर्दा विच बड़े कमाई वाले, जदों दर्द दी गल चली बाबा रामकिशन जी दा जीवन, बाबा हीरा सिंह भाई हीरा सिंह जी दे पिता भाई हीरा सिंह कीर्तनी, उन्हां दे पिता जी ने कीर्तन कीता पर कीर्तन तो बाद गए नहीं, दंपति दोनों जी बैठे रहे। बाबा रामकिशन जी दे नेत्र बंद सन, जदों नेत्र खुले पुछया गुरु के कीर्तनिया च गए नहीं, सेवादार ने क्या घर पुत्र नहीं घर संतान नहीं, भाई वीर सिंह उन्हां ने लिखे संत गाथा विच घर संतान नहीं, ते गुरु ग्रंथ साहिब दे सामने खलो के क्या सच्चे पातशाह तेरी कीर्ति करन वाले नूं कादी मुताजी, हीरा होवेगा हीरा। उदू बाद भाई हीरा सिंह जी दा जन्म होया, हीरा होवेगा हीरा उन्हां दा बिरहा कदी तुसी देखियो। मैं सिर्फ दो कु उदाहरण दे देना, वाहिगुरु कृपा करे क्योंकि बाणी सारे प्रेमा भगती वालियां दी है, सिमरन करन वालियां दी है, ये बाणी वाचक ज्ञानियां दी नहीं जे, ये भांडे मांजन वालियां दी, झाड़ू लाण वालियां दी। ठीक है असीं कथा कीर्तन करने आ, जे बाबे दे दर्शन करने ने ना वो किते भांडे मांजन वाले ते किते जोड़े झाड़न वालियां दे कोल बैठे हुंदे, असलियत है। इन्ने प्यार च भिज के दो सिर्फ एग्जाम्पल मैं उदाहरण दे देना कि बिरखा ते इस घर की सेवा उन्हां दी याद तां क्योंकि बाबाणियां कहानियां पुत सपुत करे। रागी सिंह कीर्तन करदे पए ने, बाबा रामकिशन जी कीर्तन सुनदे पए ने, प्रसंग चल पिया सच्चे सौदे दा, चेते रखे ओ बाबे नानक वाले सच्चे सौदे दा। इहदे लई तां सच्चा सौदा शब्द भी नहीं वरतना चाहिए, इनू ईरखा ना समझियो, जिस बापू दे नां ते सौदे दियां गल्लां करदे ने लोक, चेते रखियो उस पिता जी ने तक नजर भर के देखिया ते नचन वालियां नूं ब्रह्म ज्ञान हो गया। इस नजर विचों जिन्हों तकदा उत्थे विषय पैदा हो रहे नहीं। गल चली सच्चे सौदे दी, कीर्तन करदे होए कीर्तनीए जिवें भाई साहब ने व्याख्या कीती, कीर्तन करदे जदों इत्थे पहुंचे कि बाबा कालू जी ने गुरु नानक साहब दे पवित्र मुख उत्ते अपने हथ नाल चपेड़ मारी, पर सिखा तू सुन के बाबा कालू जी लई किते अंदर माड़ा फुरना ना बनाई। वो पिता जी ने धन धन पिता धन धन कुल धन धन सो जननी जिन गुरु जनिया माए, जदों दो कवरी क्या रागी सिंह ने कीर्तन कर दिया कि देखो चपेड़ मारी बापू जी ने पुत्र दे मुख ते गुरु नानक साहब दे मुख ते, ते इस तरह निशान पै गए जिवें किते चिट्टे कमल फुल दे उते काले रंग दे भवरे बैठे होण, जिवें लाल मुख कमल फुल दी तरह ते उंगलियां दे निशान काले भवरे। इन्ने शब्द कहे कि चपेड़ वजी हजूर दियां अखां सिम आईयां, बाबा राम किशन जी बिचों उठ के खड़े हो गए, बाबा कालू जी ना मारो, बाबा कालू जी ना मारो। 20 रुपया की गल मैं सारा घर ही सिखा कह के सोने नाल मिला दिया। हुण तुसी देखो ते समा रह गया कोई, स्थान रह गया कोई नहीं। जड़ा समय स्थान ते जिंदा पकड़ ते जिंदा, शायद अजे ओ आत्मक मंडल की उडारी नहीं जानता। आत्मक मंडल विच समा स्थान तक दी रहिंदे कि ना मारो शब्द वरते। ते धन गुरु ग्रंथ साहिब नूं इन्ना प्यार के हजूर दे चरना भी जदों रात नूं सेवा करनी ते बाबा राम किशन जी होना ने गुरु ग्रंथ साहिब दे पलंग कोल जाके बैठ जाना ते कहना सच्चे पातशाह ए सारी रात किवें निकलेगी। पर सोकत जाने पीर पराई जां कै अंतर दर्द ना पाई, सच्चे पातशाह सारी रात किवें निकलेगी, किवें तेरे तो बिना मैं रह सकांगा। बैरां विच आके रोई जाना फिर कहना उठ मना बार बुवे दे बह जा। धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह विश्राम पै कर दे। महंत तारा सिंह जी का जीवन पढ़िया, जिहड़ियां दो गल्लां सिर्फ मैं सांझियां करनियां ने, वो शब्द कहे एक ता क्या भांडे मांजे ते दुख जांदा रहा रोग जांदा रहा, ते दूसरी बात जो गुरमुखां ने लिखी भी महंत जी चले गए फिर दोबारा लिया, ये शब्द लिखे ने। ते एक दिन बाबा जी नूं कहा बाकी सब ता साथी कीर्तन करदे ने, कोई कथा करदा कोई गुणी कोई ज्ञानी, मैं ता भांडी मांजना वा, महापुरखां दे कशहरे बस्तरी सेवा ही करना वा। ते कहिंदे ने जो लिखे है मैं सिर्फ बाणी विचों उदाहरणां देनियां ने साखी लई। इको गल कही कि तुसी भांडे मांजी जो सेवा करी जाओ, गुणी ज्ञानी तुहाडे सामने चुकणगे। हुण आ शब्द भांडे रोग मिटांदे ने, भांडे गुणी ज्ञानी चुकांदे ने। जदों ये शब्द पढ़िया ते मन ने कहा धन गुरु अर्जुन साहब तुहाडे इस श्लोक की व्याख्या हो गई कि पाछन करोत अग्रणी वह, श्लोक संस्कृति, सेवा करन वाले जेड़े पिछे रहिंदे ने ओ आगू बन जांदे ने। पर चेते रखो आगू राजनीतिक शब्द नहीं, साध तो बिना गुरमुख तो बिना जेड़ी मैं बेनती कर लगा, जिंदगी दे विच कदी भी आत्मक रस नहीं भरिया जाना जिन्नी देर तक रसीए दी संगत नहीं। हंगता विच आके मैं कही जा मैं किसे दी परवाह नहीं करदा, मैं गुरु ग्रंथ साहिब नूं मानना, चेते रखो कई बार ये शब्द भी हंगता वाले हो जांदे ने। गुरमुख दी संगत, भाई साहिब भाई गुरदास जी ने एक बहुत सोहनी उदाहरण दिती, वो कहिंदे ने कमाईयां ही साध बनांदियां ने ते कमाईयां अपनी अकल नहीं लैंदी, कमाईयां कृपा नाल हुंदियां ने। यही कारण कि जदों किते कोई आम तौर ते तपीसर तप कर देने ਉਹ ਖੰਗਤਾਂ ਵੀ ਜਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਸਾਲ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਮਿਹਰ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਹਉਮੇ ਮਿੱਟਦੀ ਏ। ਕਦੀ ਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਿਹਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਖੰਗਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਸਾਧੂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਲਾਈਏ, ਹਿੰਦੂ ਨਾਲ ਲਾਈਏ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਅਜੇ ਖੁੱਲੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਬੀਜਨੇ ਆ ਕਿਸੇ ਫਸਲ ਦਾ, ਕਣਕ ਬੀਜੋ, ਝੋਨਾ ਲਾਈਏ, ਚਣੇ ਬੀਜੀਏ। ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਣਕ ਜਦੋਂ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਦੀ ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਧੂ ਕਿਵੇਂ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਸਾਧੂ ਨਾਮ ਹੀ ਬੋਲੇ, ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਔਰਾ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਦੁਖੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਣਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਸਰਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਪੇਡਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਸਰਦੀ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਪੱਕਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਈ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਅੱਤ ਦੀ ਸਰਦੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕੋਰਾ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਉੱਤੇ ਪਈ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਸਰਦੀ, ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਉਸ ਫਸਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਖੰਡਾਉਂਦੀ ਏ, ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਨੇ ਪੱਕਣ ਲੱਗਣਾ ਉਦੋਂ ਲੂਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਸਰਦੀ ਵੀ ਜਰੀ, ਗਰਮੀ ਵੀ ਜਰੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਰਦੀ ਤੇ ਗਰਮੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜਰ ਲਿਆ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੇ ਝਾੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਉਹਨੇ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ, ਰੱਬ ਨੇ ਕਣਕ ਵਿੱਚੋਂ ਦਵੈਸ਼ ਹੀ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਏਗਾ ਮੈਂ ਸਭ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਾਂ। ਕੌਣ ਹੈ ਸਾਧੂ? ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਣਕ ਯੂਰਪ ਦਾ ਗੋਰਾ ਖਾਏ ਤੇ ਕੀ ਉਹਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ? ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਣਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਖਾਏ ਤੇ ਕੀ ਉਹਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ? ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਣਕ ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਭੁੱਖ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ? ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਏ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਪਾਹ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਪਾਹ ਦੇ ਵੜੇਵੇਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਘਰਾਂ ਵੀ ਸਾਡਿਆਂ ਚ ਸਵਾਹ ਨਾਲ ਮਲਨੇ, ਮਿੱਟੀ ਚ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਰਾਖ ਚ ਮਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਮਲੀ ਚ ਮਲੇ ਜਾਣੇ, ਉਹ ਵੜੇਵੇਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਚ ਪਾਣੇ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰ ਦੇਣਾ। ਕਪਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਟੀਂਡੇ ਲੱਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਪਾਹ ਬਾਹਰ ਆਈ ਤੇ ਚੋਣੀਆਂ ਨੇ ਚੁਣ ਲਈ, ਵੇਲਣੇ ਵਿੱਚ ਵੇਲੀ ਗਈ, ਰੂਹ ਪਿੰਜਣੀ ਵਿੱਚ ਪਿੰਜ ਦਿੱਤੀ, ਪਿੰਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਤ ਕੱਤਿਆ ਚਰਖੇ ਤੇ, ਕੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਣ ਕੇ ਕੱਪੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਪਰਤ ਕੇ ਦਰਜੀ ਨੇ ਕੱਟ ਕੇ ਰੰਗ ਚਾੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਖੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਸ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਨੇ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕੋ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਧਨਾ। ਕਪਾਹ ਜਦੋਂ ਕੱਪੜਾ ਬਣਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਸਮਝ, ਇਹਨਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਪਾਹ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਕਦੀ ਨੀ ਦੇਖਦੇ ਹਿੰਦੂ ਕੌਣ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਣ, ਚੰਗਾ ਕੌਣ ਤੇ ਮੰਦਾ ਕੌਣ। ਜਿੰਨੇ ਚਾਦਰ ਲੈ ਲਈ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਉਹਦੀ ਪੱਤ ਵੀ ਢੱਕੇਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਏਗੀ, ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗੀ। ਤੀਸਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਮਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਲਸੀ ਜੀ ਨੇ ਰਾਮਚਰਿਤ ਮਾਨਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੋਰੋ ਮਨ ਪ੍ਰਭ ਅਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਤੇ ਅਧਿਕ ਰਾਮ ਕੇ ਦਾਸਾ, मोरो मन प्रभ अप्स अस विश्वासा राम ते अधिक राम कर दासा। क्यों? कहन लगे इस करके कि परमात्मा इस तरह है जिमें समुंदर है ते संत इस तरह जिमें बदल है, परमात्मा इस तरह जिमें चंदन है ते संत इस तरह जिमें खवा है। मोरो मन प्रभ अस विश्वासा राम ते अधिक राम कर दासा। राम सिंधु वो समुंदर है, समुंदर दा पानी नेड़े दे के पी के देखो कोई पी सकता माई दा लाल? उदाहरण दा एक पख लेना, समुंदर दा पानी मूंह च पाएगा कहेगा खारा, पर रब ने बदल पैदा किया बिल्कुल समुंदर निंदी ना, तेन पीण की जांच नहीं आई, मैं तेन खारे तो मिठा बना के पियाना। साधु की है परमात्मा की गल हर बंदे तक पहुंचाने वाला। समुंदर तेरे को बड़ी वड्डी शक्ति कोई शक नहीं, तेरा थां नहीं, पर कुर्बान जाइए इन्हां बदलां तो जेड़े तेरे तो नीर लैके मिठा बना के दुनिया नूं वंडदे पए। राम सिंधु गन सज्जन दी राह हर तरु जन संत समीरा। परमात्मा चंदन है पर याद रखियो चंदन दी महक भी अगे तां जांदी है जे खवा चलदी होवे, खवा ही तां महक नूं अगे लैके जांदी। रब दे संत जन वो बदल दी तरह खवा दी तरह ने। भाई साहब ने तीसरा जेड़ा प्रमाण लिया, कह लगे पानी पहाड़ तो निकलिया निवान वल गया, हर रंग विच पानी समा गया ते पानी दी कालना देखो वो तुरदा ही रहिंदा है, निर्मलता ही उहदे कोल है। जे चिड़ी ने चुंज भरी प्यास उहदी भी गई, जे किते मिर्ग ने आके घुट भरिया प्यास उहदी भी गई, जे शेर ने पानी पीता प्यास उहदी भी गई, जे किते साकत ने पानी पीता प्यास उहदी भी गई, ते अगे संत दी कुटिया जदों चूली भर के उहने पीती प्यास उहदी भी गई। पानी दे विच कोई दवैश थोड़ा है, जो पीएगा उहदी प्यास जाएगी। भाई साहब दा एक कबित है, जैसे तो अनाद आद अंत पर्यंत खंत, सकल संसार को आधार भयो ताही सह। जैसे तो कपास त्रास देसना उसास काटे, जगत की ओट पै अंबर दिवाही सह। जैसे आपा खोए जल मिले सब वर्ण में, खग मृग मानस तृप्त गत जाही सह। तैसे मन साध साध साधना कै साध भय आने साधु। मन साधना असी कह देने कि चोले पा के तुरे फिर दे, क्योंकि अज हर बंदे दे शब्द ने गुरमुखो पा के चार दिन दुनिया दे कबोल सह के ता देखो। हर बंदे नूं असीं इक्को रस्से नाल ना बनी जाइए, क्योंकि साडा सुभाव हो गया अज तां, क्योंकि सिखां च मैं शब्द जिहड़े कह रहा सिखां च इक रिवाज जिहड़ा मुद्दा उठदा उहदी कथा ही किन्ने किन्ने महीने चली जांदी, उह किन्ने किन्ने महीने जुगो जुग टल बाणी दी कथा ही ने। जे किने कहा साध इस तरह, दूजे ने बस वेखना नहीं फिर शुरू कर देना है। कहिंदे तैसे मन साध साध साधना कै साध भय। भाई गुरदास दा किवें साधना कीती? कहन लगे नौ द्वारे साध साध सदाया, नौ द्वारे काबू कर ले। गल्लां करने असी उहना जिन्हां ने नौ द्वारे काबू किते, साडीआं ते आ दो पोटलियां काबू ने तिकराहीआं, अखां ही नहीं काबू आईआं। वह महापुरखां दा जीवन सेवा पंथी महापुरशां दी जीवन है ना, कि साधु गया ते नाल हाथ कागज लिख के भेजिया, नाम बाबा जी जानदे ने भाई सेवा राम जी सन, क्या जेड़ा ये साधु आया है तुहाडे डेरे च तीन औगण जे, तीन औगण ने, वाह भी कमाइया वाले हो, सच्ची मुची अनुभव ही चेंज करेगा। मैं वार वार बेनती करना कि जितना मर्जी ज्ञान कट्ठा कर लो, जिदन कमाई वाला एक लंघ गया सारे ज्ञान तरे तराए रह जाने। असलियत है कलम शब्द तीन थावां ते वरतने आ, एक कलम शब्द असी वरतने आ काने नू घड़ के बनाई कलम, दूजा शब्द वरतने आ सिर कलम कर दिता, ते तीजा शब्द वरतने आ गुलाब दे फुल्लां दी कलम कीती गई, रुख दी टाणी दी कलम कीती गई। पर तीन शब्द चेते रखियो गुरमुखो, काना कदी भी तवारी की अखर नहीं लिखदा, काने कदी भी बाणी नहीं लिख सकते। कदी असी नहीं कहिंदे काने नाल लिखिया, ज्यादातर कहिंदे कलम नाल लिखिया। ते कलम बनती तां जे अपना पहला सिर कटाएगी, तां चाकू नाल कढ़िया जाए तां कलम बनती है। कलम बनेगी ते अखरां दा जन्म होवेगा, ते फिर जदो अखर चंगे लिखेगी उस कलम नूं भी कहणगे धन। सो कागद कलम धन। ते जदों किसे गुलाब दे पेड़े दी टाणी कट्टी जांदी उहदी कलम बनाने, पर शर्त उस गुलाब दियां जड़ां धरती च खरियां होण, सुक्का ना आप होवे। सुक्की टाणी कट के लिजाओगे ते कित्थों पुंगरेगी, जिदियां जड़ां खरियां ने अध विचकारों तोड़ के कलम बना दिओ, कट के लै जाओ। वह टाणी कहिंदी चेते रखी, जिदे नालों तू मैनू लैके आया वह जीवन वाला है, मैनू मारू थल विच लाई, मैं ओदे वर्गा रुख होर पैदा कर दिया। कलम है ना, घड़ के लाई उन्हें गुलाब का फुल पैदा कर दिता। उन्हें कहा तू मैनू कटिया, मैं अपने वर्गी 100 टाणी पैदा कर देंगी। चेते रखियो जदों फिर कमाई वाले का सिर कलम हुंदा है ना, ते जिन्नियां बूंदा डिगदियां उन्हें शहीद पैदा कर जांदा है। वो जीवन है, सिखी एक जीवन है। महापुरखां कोल आए कदी सबब बनिया, संत रतन माल विचों मेरी विच इच्छा सी कि लड़ी वार जीवन ब्योरे सारे दिते जान, क्योंकि असी अध्यात्मक पक्ष नूं छूण नूं तैयार नहीं। लिख दिता इस विच तीन औगन ने जिहड़ा तुहाडे डेरे आया, ते महापुरख पढ़ के रो पए, रो के कह लगे गुरमुखा तू ताने सिर्फ तेरे च तीन ही रह गए, असी तां सारे औगणा नाल भरे, तेरे च सिर्फ तीन रह गए। हंबला मार तीन तां कुछ भी नहीं हुंदे, तेरे च सिर्फ तीन रह गए। असी तां जेता समुंदर सागर नीर भरिया तेते औगण मारे, बस इहो जिहा शब्द कहे सच्ची मुची उहदा अंदर अंदर शुद्ध कर दिता। उह क्यों? क्योंकि उहनां दे शरीर विचों उठदा होया ओरा ओदियां तरंगां तब्दील कर दियां ने। भाई साहब दी रचना दी अखीरलियां तुकां तैसे मन साध साध साधना कै साध भय जगत को उधार, अवगाही से उन्हां दी अगवाई नाल ही दुनिया दा भला होवेगा जिन्हां मन साधे है। ते शायद यही कारण बाबे नूं ज्ञानी तां बहुत मिले, पर मेरे बापू नानक ने कहा सिद्धो की करां थम्मे कोई ना साध बिन साध ना दिसै जग विच कोवा। उन्हें कहा साधु तो बिना नहीं कोई थम सकता। भाई साहब शब्द पढ़ के गए, दर्द की गल की, महापुरखां की बात की, उन्हें भांडे मांजे, सेवा की। भाई साहब गुरमुखां ने लिखे है कि रात नू पाठ होना, सब ने सौ जाना, वो गुरु ग्रंथ साहब का पाठ पे सुनते, लंगर दे भांडे पे चुकते ने। गुरमुखो सच है गुरु अर्जुन देव जी का यह बचन साकार होया इस धरती ते, पाछं करोत अग्रिणी वह निरासंग आर आस पूर्ण है, निर्धन भयंग तनवंत है, रोगियंग रोग खंडने। भांडे मांजे रोग चले गए, रोगियंग रोग खंडने, भगतिंग भगत दानंग राम नाम गुण कीर्तन है, पार ब्रह्म पुरख दातार है नानक गुर सेवा की ना लभ्यते, किन ना लभ्यते, केड़ी चीज है जेड़ी गुरु दी सेवा विचो नहीं लभदी। फिर एक राजा सामने आ जाए ते एक झाड़ू लाने वाला महापुरख, क्योंकि शब्द नहीं कहने, मैनू पता है बाबा सतनाम सिंह जी ये चीज बर्दाश्त नहीं करते, पर एदे च कोई शक नहीं। बाबा हरबंस सिंह जी एक दिन आए घर, ग्रह चरण पाए उन्होंने घर सेवा वाले, दरबार साहब की परिक्रमा की गल चली, वो भी बैराग च, क्योंकि नाम रसिक जितने भी ने ना, बस यूं समझो जे गुरु की देह अमृत नाल भिजीए तो उहदे नेड़े रहण वाले सुके रह जाणगे। गुर अमृत भिन्नी देहुरी, ते कल्ली भिजी नहीं, साडी कपड़े भिजे होण तां कपड़े नुचड़ के पानी थले नूं जांदा है, ते गुरु इहो जिहा पुज्जा जिहदे शरीर विचों फुहारे निकलदे ने, थले नहीं पानी नुचड़दा केवल। गुर अमृत भिन्नी देहुरी, अमृत बुरके राम राजे, जिन्ना गुरबाणी मन भाइया अमृत छक छके। कह लगे दरबार साहब दी परिक्रमा दी गल चली, बाबा गुरमुख सिंह बाबा बीरमदास दी सेवा कीती उन्हां। कह लगे बाबा जीवन सिंह जी नूं के दरबार साहब दी परिक्रमा चो एक डिग्गा होया कख एक पत्ता भी कोई बाहर सट्टेगा करोड़ा जन्मां दे पाप कटे जांदे। क्यों असी कहांगे थावां सारियां इको जिहियां? बिल्कुल इको जिहियां नहीं, धरती दे टुकड़े इको जिहे हो सकदे ने, उत्थे लंघो तां सही। लोग कहिंदे ने संघ मरमर लगा, मैं कहिंदा नहीं, साडे पुरखियां दे सिर लगे, इस करके आउण वालियां पीढ़ियां नूं दर्शनां तों कोई रोक ना सके। ਉਹਨੇ ਪੱਥਰ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਥੱਲੇ ਸੀਸ ਪਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਈਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਂਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਂਜੇਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗੱਲ ਲੁਕਾਏ ਲੁਕਣੀ ਨੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਂਡਿਆ ਜਾਣਾ ਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਆਹ ਤਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਝੂਠਾ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਧੁੱਪ ਜਾਏਗਾ, ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਿਣ ਚ ਧੋਣ ਵਾਲਿਆ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਧੋ ਦੇ। ਜਿਤਨਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ ਗੁਰੂ ਓਨੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਆਓ ਆਪ ਸਭ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਉੱਚੇ ਜੀਵਨ ਬਣੇ, ਜੀਵਨ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਦਰਦ ਦਾ। ਰੁੱਖਾਪਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ, ਅਥਰੂ ਕੇਵਲ ਦਰਦ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਾਈਆਂ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਮਸਕਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ
1: ਫਤਿਹ। You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
0: ਕਿ ਰਾਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਖਿੜੇ ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਸਹੀ ਸੱਚਿਆ, ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਸੇ ਕਾਂਡੇ ਕੱਚਿਆ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਨ ਚ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਮੂੰਹ ਚ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ, ਕਰਤਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਜਿਵੰਦੇ ਵਿਛੜੇ, ਕੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੋਇਆ ਨਾ ਜਾਈ ਛੋੜ। ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਚਲਾ ਵੀ ਜਾਏ, ਪਰ ਜਿਹਦੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜੀ ਉਹਦੇ ਕਦੀ ਬਾਂਹ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲੋਕ ਪੜਿਆ, ਉਸ ਮੁਰੀਦ ਨੇ ਸਲੋਕ ਪੜਿਆ, ਰਾਤ ਕਥੂਰੀ ਵੰਡੀਐ। ਕਥੂਰੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਕਸਤੂਰੀ, ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਸਤੂਰੀ ਵੰਡੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੁੱਤਿਆਂ ਮਿਲੇ ਨਾ ਭਾਉ, ਇੱਥੇ ਭਾਉ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ ਹਿੱਸਾ। ਉਂਝ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਾਉ ਦਾ ਅਰਥ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ, ਉੱਥੇ ਭਾਉ ਦਾ ਅਰਥ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਭਾਉ ਦਾ ਅਰਥ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਭਾਉ ਦਾ ਅਰਥ ਹਿੱਸਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਕਥੂਰੀ ਵੰਡੀਐ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਮਿਲੇ ਨਾ ਭਾਉ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਕਸਤੂਰੀ ਵੰਡੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਭਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ। ਸੁੱਤਿਆਂ ਮਿਲੇ ਨਾ ਭਾਉ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੈਣ ਨੀਂਦ ਰਾਵਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ। ਨਿੰਦ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਅਰਥ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੈਣ ਨੀਂਦ ਰਾਵਲੇ ਤਿੰਨਾ ਮਿਲਣ ਕੁਆਓ। ਸੁੱਤਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਲੋਕ ਸੁਣਿਆ, ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਵੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਕਸਰ ਸ਼ਬਦ ਵੇ ਬਹੁਤ ਵਰਤਦੇ ਸਨ ਜੀ, ਬੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਵੇ ਸ਼ਬਦ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਿੰਡਾਂ ਸਾਡੇ ਵੇ ਮੇਰਿਆ ਵੀਰਾ, ਵੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬੁਲਾ, ਇਹ ਵੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 7 ਵਾਰੀ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੈ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਪਾਪ ਕੀ ਜੰਜ ਲੈ ਕਾਬਲੋਂ ਧਾਇਆ, ਜੋਰੀ ਮੰਗੈ
2: दान वे लालो, किन्ने प्यारे शब्द वरते, वे लालो वे लालो। महाराज भाई मरदाने जिन्हों भी कहते होंगे सन वे मरदाने, जदों शलोक सुनिया ते आवाज दिती वे मरदाने जी हजूर, कहन लगे आ सुनिया की गा रहा है नेरे च। उन्हें फिर ध्यान दिता ते पंजाबी लहिंदी पंजाबी सी, कहन लगे महाराज जी ए गा ता रहा है रात कथूरी वंडी है, क्योंकि भाई मरदाना जी का जेड़ा हाफज याद शक्ति सी बड़े कमाल दी सी। तुसी हैरान होवेगे गुरमुखो, 54 साल भाई मरदाना जी ने गुरु नानक साहब दे नाल कीर्तन कीता है, 1480 तो लैके सन ते 1534 तक 54 साल भाई मरदाना जी ने गुरु नानक साहब नाल कीर्तन कीता। ते जिन्नी संगत, जिन्ना प्यार, जिन्ना लाड, जिन्ना बख्शां भाई मरदाने तो हुई गुरमुखो, 54 साल गुरु नानक साहब दे नाल तां मापे भी नहीं रहे, 54 साल तां माता सुलखनी जी नाल नहीं रहे, बच्चे नाल नहीं रहे, बेबे नानकी। मैं तां कहा जी 54 साल भाई साहब ने सतगुरां दी संगत कीती। एक मैं छोटी जी उदाहरण दे देना होर, साडियां जन्म साखियां च एक बोल लिखिया कि जदों भाई साहब जी का अंतला समा आया ना जी, साडे पुराने ग्रंथ कहिंदे कुरम दरिया 1534 जी जे तरीक वेखीए ते उन्हां दिनां च धन गुरु नानक साहब करतारपुर ने, चलो जिथे भी वापरी घटना, भाई मरदाना जी का अंतला समा हुंदा है। भाई मनी सिंह उन्हां दी जिहड़ी जन्म साखी च बड़े प्यारे बोल ने, कहिंदे भाई साहब जी गुरु नानक साहब जी दे कोल बैठे आ ते रबाब सतगुरां दे चरणां च रख दित्ते, रबाब ते कपड़ा चाढ़िया महाराज दे चरणां च रख दित्ती। सतगुरु जी नूं कहिंदे आ महाराज जी असां दा अंतला समा आ गया, हुण सतगुरु समर्थ जानदे आ। भाई साहब जी नूं सतगुरां ने अपनी झोली च उन्हां दा सीस लै लिया, भाई मरदाना जी दा। जन्म साखी वाला कहिंदा है कि सीस लैण तों बाद सतगुरां ने मस्तक ते हाथ रखिया, पहला बचन कीता, कहन लगे वे मरदानिया तेरे जान तो बाद असी शरीर नू केड़ा दाग दईए, जिनू आपां अंतम संस्कार कहने, तुहाडे शरीर नू कबर विच खाक दे सपुरद करिए, कब्रस्तान विच मिट्टी दे विच दबिए, तुहाडे शरीर नू अग्न भेट करिए, तीसरा बचन क्या तुहाडे शरीर नू बाहर रहन दईए, चौथा बचन क्या कि तुहाडे शरीर नू जल प्रवाह कर दईए। जदों चार बचन कहे कि खाक दे सपुरद, अग दे सपुरद, जां मिट्टी दे, जां पानी दे, जां बाहर रहन दईए, कहिंदे भाई साहिब दे नेत्र खुले, नेत्रां च चमक सी, मेरे दाता जी दा मुख वेख के कहिंदे ने बाबा जी अजे भी शरीर दीआं गल्लां, शब्द सुणियो, अजे भी शरीर दीआं बातां। भाई मनी सिंह कहिंदे ने इन्हां शब्द कह के नेत्र बंद कर लै, सतगुरु मुस्कुरा के कहिंदे आ वे मरदानिया तेरे जान तो बाद तेरे तन नूं असीं कबर विच दफनावांगे। इस ध्यान रखियो साखी दा इक पासा, असीं कबर विच दफनावांगे, लोक तेरी कबर नूं पूजणगे। इहनूं ध्यान नाल मेरी गल सुणियो, क्योंकि कोई अजकल समस्या आवे, वैसे महापुरखां दा थांक है, इह लोक अर्थ दे अनर्थ करी जांदे आ विचों गल्लां कट कट के, भी असीं तेरे शरीर नूं कबर विच दफनावांगे, लोक तेरे कबर दा सत्कार पूजा करनगे। कहिंदे ने अंतले समय हथ जोड़ के क्या सतगुरु जी आप जी ने किरपा कीती, शब्द दी दात दित्ती, कीर्तन दी दात दित्ती, शब्द पढ़ पढ़ के कीर्तन ने तेरिया रहमता ने चमड़े दी कबर विचों बाहर कढ दित्ता है, हुण चम दी कबर चो कढ के पत्थरां दी कबर च ना डक्यो, मैनू ओथे रखियो जिथे तुहाडा वासा होवेगा। हुण याद रखियो इह किड्डी वड्डी बख्शिश जी, वी चम दी कबर चो कढ के पत्थरां दी कबर च नहीं, मैनू ओथे रखियो जिथे तुहाडा वासा होवेगा। महाराज जी ने खस के कहा वे मरदानिया तू ब्रह्म नू पछाता, तू ब्राह्मण बन गया, जिथे साडा वासा होवेगा उथे तेरा वासा होवेगा। मैं सिर्फ एक बेनती इस करके कर लगा कि उन्हां दी याद शक्ति बड़े कमाल दी सी। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਥੋੜਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਡਾਇਰੀ ਤੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿੰਨੀ ਸੁਰਤ ਇਕਾਗਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ

0: listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पवित्र बाणी ए तुर की बाणी दुखां दा कलेशां दा नाश करन वाली बाणी एक ओंकार तो लैके 18, 10, 20 तक सारी बाणी सर्व कल्याण करन वाली कल्याण रूप बाणी है। महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। अज संसार वल जाती पाईए हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। महाराज बाणी विच भी इस संसार दी हालत नू दसदे हन के जिस मनुख पै करो बेनती सो अपने दुख भरिया। हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। किसे दा कार विहार नहीं चलदा, किसे दे कार तो दुख नहीं निकलता, किसे नू मुकदमा पै गया, किसे दे घर औलाद नहीं होई तां दुखी है, जे औलाद है तां हुकम विच नहीं है ओ तां दुखी है। अनेक तरह दे होर दुख हन, इना सारियां ही दुखां दा जो दवा है औषधि है महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। मेरा बैद गुरु गोविंदा हर हर नाम अवखद मुख देवै काटै जम की फंदा। मेरा सतगुरु ऐसा बैद है कि मेरे तन दे रोग भी मिटा देंदा है, मेरे मन दे रोग भी मिट जांदे हन। केड़ी दवाई देंदा है, आख्या हर हर नाम अवखद मुख देवै। जदों नाम दी सिमरन दी दवाई गुरु ने मैनू बख्शी ना तो मैनू इस संसार दे दुखां दी तत्ती वा लगी, ना जमा दी तत्ती वा लगी, एथे ओथे आप परमेश्वर रखवाला हुआ। तो उस पवित्र बाणी विचों कुछ शब्द रख्या दे आप दी भेटा कर रहा। ए सर्व रोग दा नाश करन वाली बाणी, पर एक शर्त है, श्रद्धा प्यार सिदक दे नाल अमृत वेले जाग के इशनान करके ए बाणी पढ़िए तां फिर दुख नेड़े नहीं आ सकदे। आओ सारे गुरु की बाणी दा ए अभ्यास करिए, क्योंकि गुरु की बाणी तां है ही ऐसी।

वेद प्राण कतेबा कुदरत सर्व विचार कुदरत खाना पीना पहनन कुदरत सर प्यार कुदरत।

0: Fate
1: ek ओंकार सतनाम करता पुरुख निरपाओ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद जप आदि सच

0: संगत कीती है, जमाले हम नशें दरमन असर कर दे, वगरना मन हमा खाकम के हस्तम, फुल्ला दी संगत करके फुल्ला दी नेड़ करके मेरे विच भी सुगंधी आ गई है, महक आ गई है, वरना मैं ते एक नाचीज मिट्टी हां। तो शेख सादी साहब कहन लगे, मैं एक नाचीज मिट्टी दा पुतला, सत पुरुषां दी सोबत करके ये गुणा दी सुगंधी मेरे अंदर पैदा हुई है, ये जो महक है ये मेरी अपनी नहीं किसे तो मिली है, ये जो चमक दमक मेरे कोल है ये मेरी अपनी नहीं मैनू किसे तो मिली है। तो साहिब गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान, सत पुरुषां दी जो सोबत नसीब हुई ये मेरी मंगनी हुई, और संसारिक विकारां दा जो त्याग हो गया ये मेरा विआह होया। तो तृप्ता जी ने पूछ लिया, पुत्र नानक इस भगती रूपी कामण ने किसी संतत नूं भी जन्म दिता है, थोड़ी कोई औलाद भी है, थोड़ा कोई बच्चा भी है, क्योंकि परिवार बच्चे तो बिना भी ते अधूर है। साहिब कहिंदे हां सच संतत कहो नानक जोग, इस भगती रूपी कामण ने सच रूपी पुत्र नूं जन्म दिता है, ज्ञान रूपी पुत्र नूं जन्म दिता है, ईश्वर नूं जन्म दिता है। हैरान हो गए कि ईश्वर दे नाम भगत लोग रखते हैं, हुण मां बाप बच्चियां दे नाम रखते हैं पर भगत रब दे नाम रखते हैं जो जगत पिता, यह गल उल्टी है। मां बाप बच्चियां नूं जन्म देंदे हैं, भगत रब नूं जन्म देंदे हैं। साधु सत्तम जाणो नानक प्रीत कारणे, गुरु अर्जन देव जी महाराज का कहना, अगर साधु ते भगत ना होवन तो ईश्वर की होंद का कोई पता भी नहीं चलेगा। ये ही प्रगट करते हैं उसकी होंद नूं, उसकी असलीयत नूं, उसकी वास्तविकता नूं जगत दे सामने रख देना। तो सच रूपी पुत्र नूं जन्म दिता है, ज्ञान रूपी पुत्र नूं जन्म दिता है, कहो नानक जोग मैं इसे ही परिवार जोगा। मुख्तसर इस परिवार की तफसील, गुरु नानक का कहना है जिथे सतसंग होवेगा उथे चंगी मत होवेगी, जिथे चंगी मत होवेगी उथे संतोख होवेगा, जिथे संतोख होवेगा उथे अपनी मेहनत ते भरोसा होवेगा, जिथे अपनी मेहनत ते ही भरोसा होवेगा, प्रालभत ते भरोसा होवेगा उथे सुरत देच एकाग्रता होवेगी, जिथे सुरत देच एकाग्रता होवेगी उथे विकारां दा त्याग होवेगा, जिथे विकारां दा त्याग होवेगा उथे भगती होवेगी, और जिथे भगती होवेगी उथे ज्ञान होवेगा, और जिथे ज्ञान होवेगा उथे परमात्मा आप होवेगा।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਫਰੂਟੀ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋਲਸੇਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਫਰੂਟੀ ਕਹਿਣਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਾਊਥ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ, 2990152 ਸਟਰੀਟ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹਨ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ, ਲਾਲ ਗੰਡੇ 25 ਪਾਉਣ ਦਾ ਬੈਗ 15.98 ਦਾ, ਪੀਲੇ ਗੰਡੇ 50 ਪਾਉਣ ਦਾ ਬੈਗ 15.98 ਦਾ, ਅਤੇ ਭਿੰਡੀ ਲਵੋ 1.99 ਪਾਉਂਡ।
3: फैमिली केयर फार्मेसी
4: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर 1।
3: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
4: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स, कंप्रेशन स्टॉकिंग्स, ऑर्थोपेडिक प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
3: हुन मोबिलिटी एड रेंट जां बाय भी कर सकदे हो।
4: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल-नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
5: 3 लोकेशंस टू सर्व यू, सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक,
3: जां कॉल किरण एट 604-581-1900।
6: पंजाब फॉरेक्स गगन सिंह, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰੁਪਈਏ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜੇ ਰੁਪਈਏ ਬਾਫਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਡਾਲਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਗਗਨ ਸਿੰਘ 604-349-1313 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰੁਪਈਏ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਿਓ। 604-349-1313 ਯੂਨਿਟ 103-8840-120 ਸਟਰੀਟ ਸਰੀ, 604-349-1313, 604-349-1313। ਗਗਨ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਫੋਰੈਕਸ, ਦਾਵਾ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਪੱਕਾ।
7: Need help navigating our ever-changing real estate market? Gurdale Baud of RE/MAX Real Estate Services is among the top 1% of all Lower Mainland realtors. Whether you're thinking of buying or selling residential properties, commercial properties, or farmland, call the agent with 30 years of experience to help you. Gurdale Baud, your realtor for life. Call Dale at 604-303-7653 or go online at GurdaleBaudGroup.com.

ब्रह्मा विष्ण नारद मुनि से कहा, तिन भी तन में मन नहीं देखा। वो भी मन दिया गहराइयां नु समझ ना सके ते मन दे हथों ठगा गया, ब्रह्मा ठगा गया। किस तरह ठगा गया? अपनी बच्ची दा रूप वेख के ही अपना मन मैला कर बैठा। पुराण कथावां जिसका अनुवाद करते ने भाई साहब भाई गुरुदास जी, चारे वेद वखाण दा चतुर्मुखी होए खरा सियाणा, लोकां नु समझाएंदा वेख सुरस्ती रूप लुभाणा। ब्रह्मा जिहड़ी भुल ब्रह्मा करदा है ओही भुल विष्णु करदा है, ओही भुल शंकर करदा है, ओही भुल इंद्र करदा है, ओही भुल नारद करदा है। कारण क्यों करदा है? मन दियां गहराइयां नूं समझण दे असमर्थ रह गए। ते मन नूं समझना किधरे बच्चियां दी खेड ना समझ लैणी। लोकी कहिंदे ना मन नूं शुद्ध करके गुरुद्वारे जाओ, बिल्कुल गलत कहिंदे ने। ऐसा कहना भी नहीं चाहिए। मन नूं शुद्ध करके गुरुद्वारे जाओ, इंज कहना चाहिए गुरुद्वारे जाओ ताकि मन शुद्ध होवे। पहले किस तरह कर लेणगे, किवें कर लेणगे? जिन्हां नूं मन दी बिल्कुल समझ नहीं इंज कहिंदे ने मन नूं एकाग्र करके पाठ करो, बिल्कुल गलत कहिंदे ने। और वो कह रहे जिन्हां नूं मन दी समझ नहीं इंज कहना चाहिए है पाठ करो ताकि मन एकाग्र होवे। मन दी एकाग्रता ते फल है। जिहड़े कहिंदे मन नूं एकाग्र करके कीर्तन करो, मन नूं एकाग्र करके कीर्तन सुनो, बिल्कुल गलत कहिंदे ने। और मैं फिर अर्ज करा उही कह रहे जिन्हां नूं मन दी बिल्कुल समझ नहीं, कोई बोध नहीं। ओही कहिंदे ने मन नूं एकाग्र करके कीर्तन सुनो, नहीं इंज कहना चाहिए कीर्तन सुनो ताकि मन एकाग्र होवे, पाठ करो ताकि मन एकाग्र होवे, गुरुद्वारे जाओ ताकि मन शुद्ध होवे। मन नूं शुद्ध करके गुरुद्वारे जाओ, बच्चियां दी खेल। और गल स्पष्ट हो गई, मन दी समझ नहीं, मन दा कोई पता नहीं। आम साधारण मनुखां दा ते कहना की धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करते ने, ब्रह्मा विष्ण नारद मुनि सेखा, तिन भी तन में मन नहीं देखा। आम बंदे मन दे हथों ठगाए जाते ने, ब्रह्मा भी ठगा गया। किसी होर ने नहीं ठगया, मन नहीं ठग लिया विष्णु नो, मन नहीं ठग लिया शिव जी नो, मन नहीं ठग लिया इंद्र नो। जो आम साधारण मनुख भूल करते ने इंद्र भी कर बैठा है। और हैरानगी कि गौतम ऋषि दी नार अहिल्या अपने विचार अपने जज्बात नु काबू ना पांदा होया एक संत दी पत्नी नु भ्रष्ट करदा है इंद्र। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दा फैसला, गुरु ग्रंथ साहब जी इस इतिहास नु साडे सामने रखदे ने। गौतम नार अहिल्या तिस देख इंद्र लुभाया, सहस शरीर चहन भग उवै तामन पछोताया। तो मैं इस करा मनुख दे विचारां विच की है, मनुख दी सोचनी विच की है, मनुख दे चिंतन विच यादां विच की है, मनुख दे विचारां विच काम है, मनुख दे विचारां विच लोभ है, मनुख दे विचारां विच अहंकार है। मैं दोवां दा नां नहीं लिया, क्रोध ते मोह। पता है क्यों? धार्मिक दार्शनिक कहिंदे ने ये जो तीन ने काम लोभ अहंकार इन्हां दी अपनी बुनियाद है। क्रोध ते मोह इन्हां तिन्नां दी छाया है, क्रोध ते मोह दी अपनी कोई बुनियाद नहीं है, इसकी अपनी कोई होंद नहीं है। ये उन्हां तिन्नां दी छाया है, काम दी छाया है मोह, लोभ दी छाया है मोह, अहंकार दी छाया है मोह। अहंकार दी छाया है क्रोध, मोह दी छाया है क्रोध, काम दी छाया है क्रोध। जिस तो लोभ दी पूर्ति हो जाए उसते मोह आ जाता है, प्यारा लगता है, चंगा लगता है। जिहड़ा रोग खड़ी कर देवे उसते क्रोध आउंदा, गुस्सा आउंदा। जिहड़ा काम दी पूर्ति कर देवे उसते मोह आउंदा, प्यारा लगता है, चंगा लगता है। जिहड़ा रोग खड़ी कर देवे उसते क्रोध आउंदा। और जिहड़ा अहंकार नूं पट्ठे पा दे प्यारा लगता है, चंगा लगता है। जिहड़ा कह देवे थोड़े जैसा कोई दानी नहीं, थोड़े जैसा कोई ज्ञानी नहीं, तुसी ना हो तो सेवा हो नहीं सकदी, तुसी ना हो तो गुरुद्वारे चल नहीं सकदे। कुछ ते अहंकारी ऐसे होंदे ने वो आप ही अपने मुंह च सब कुछ प्रगट करदे ने। कहिंदे ज्ञानी जी असी ना होइए तो जलूस किवें निकलेगा, असी ना होइए तो

0: ਸਕੂਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਹੋਏ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਮਰ ਕੇ ਵੇਖ, ਸਭ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੇਖਵਾਜੇ ਵਜਾਏ, ਵਹੀ ਇੱਕ ਰੈਸੀ ਜੋ ਸਾਚਾ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਤੂੰ ਇਹ ਆਖੇਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਆਵਾਂ ਤੇ ਸੂਰਜ ਕਿਵੇਂ ਚੜੇਗਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਆਵਾਂ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵੇਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਗੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਆਵਾਂ ਤੇ ਹਵਾਵਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਵੇਂਗਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਐਵੇਂ ਤੇਰਾ ਹੰਕਾਰ, ਫਿਜ਼ੂਲ ਹੰਕਾਰ, ਫੋਕਾ ਹੰਕਾਰ। ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾ ਦੇਵੇ ਉਸ ਤੇ ਮੋਹ ਆਉਂਦਾ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕ ਖੜੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਉਸ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਭ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕ ਖੜੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਉਸ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਆਉਂਦਾ। ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਤਵੱਜਾ। ਜੋ ਕਾਮ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਸ ਤੇ ਮੋਹ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕ ਖੜੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਉਸ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿਆਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਤਕ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਮੋਹ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਛਾਇਆ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਤੇ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਉਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜੋ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਤੇ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੇ, ਮੰਦਿਰ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਟਿਕਾਣਾ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੇਵਤੇ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ। ਸਾਰੀ ਸਾਧਨਾ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਖੜੀਏ, ਵੇਖਣ ਤੇ ਖੜੀਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਖੜੀਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਵੇਖਣਾ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਸਾਰੀ ਸਾਧਨਾ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਖੜੀਏ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਵੇਖੀਏ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ। ਸਾਧਨਾ ਵੇਖਣਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਿਰਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਨਮਾਜ਼। ਸਾਰੀ ਸਾਧਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਲਾਵਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਵੇਖਣ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੁਣਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ। ਸਾਰੀ ਸਾਧਨਾ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਵੇਖਣ ਨਾਲੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਔਰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲੋਂ ਸੁਣਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਠਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਤਨੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਆਪਣੀ ਸੋਚਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ 'ਚ ਮਾਹੋ, ਅੰਦਰ ਜੋ ਫੁਰਨੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈ, ਕਠਿਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣੀਏ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਦੁੱਖ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਪਾਪ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਦੁੱਖ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਸੰਤਾਪ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਤੇ ਔਖਾ ਹੈ, ਔਰ ਸੁਣ ਉਹੀ ਸਕੇਗਾ ਜਿਸਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋਵੇ। ਇੱਧਰ ਭਟਕਦਾ ਪਿਆ, ਇੱਧਰ ਭਟਕਦਾ ਪਿਆ, ਉੱਧਰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਉੱਧਰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਭਟਕ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਸੁਣਨਾ ਹੈ? ਸੁਣਨ ਲਈ ਧਿਆਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਅਚਨਚੇਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਮਿੱਤਰ ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਆਖ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਦ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਇਤਨੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਿਨਾਂ ਧਿਆਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਵੀ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਸੰਤਾਪ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲਣਗੇ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣੀਏ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਸਿੱਧ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਪੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਥ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਦਾਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, इतना पावन हो जाता है कि 68 तीर्थ भी उस तो सदके किए जा सकते हैं। सुनिए 68 का इशनान इतना पावन हो जाता है, वो तो इतना पवित्र हो जाता है जे किधरे सुने। भोजन की बुरकी मूंह दे राही अंदर प्रवेश कर दी है, वो पच के मिंज बन दिए, खून बन दिए, मांस बन दिए, शरीर की शक्ति बन दिए, तवानाई बन दिए, इंद्रियां का बल बन दिए। गुरु का शब्द कन्ना दे राही अंदर प्रवेश करता है, यही समाधि बनता है, यही आनंद बनता है, यही देवी गुण बनता है, यही परम शक्ति बनता है, यही रूहानी ताकत बनता है। पर शब्द ते कन्ना दे राही अंदर प्रवेश करेगा, और उदों प्रवेश करेगा जब कोई सुनेगा, और सुनेगा ओही जिसका ध्यान पूरा एकाग्र, नहीं तो कौन सुनता है। शौकिया लोकी अपने घर देच भी अखंड पाठ रखा लेंदे ने, पर जिस कमरे दे च रखांदे ने उत्थे वड़ना ही भुल जांदे ने, किधरे सुनना ना पै जाए, कौन सुनता है, कठिन है। मनुख पुत्र नूं सुन सकदा है, मित्र नूं सुन सकदा है, पत्नी नूं सुन सकदा है, पति नूं सुन सकदा है, गुरु नूं सुनना औखा है, कठिन है। कारण गुरु दी गल, गुरु दी विचार साडे विचारां नाल तालमेल नहीं खांदी। साडे विचारां च काम, गुरु दे विचारां च राम। साढ़े विचारां च क्रोध, गुरु दे विचारां च दया। साढ़े विचारां च हंकार, गुरु दे विचारां च निरंकार। निर्माणता विनिमरता तालमेल नहीं बैठता। वाजे दी सुर एक पासे जाए, तबले दी सुर एक पासे जाए, कदन तालमेल नहीं बैठेगा, तालमेल नहीं बैठेगा। ताल तबला सुर ताल दोहां दा मेल ते बैठना चाहिए। सुर किसे पासे जा रही है, ताल किसे पासे जा रहा है। गुरु दे विचार कुछ होर, साडे विचार कुछ होर, तालमेल नहीं बैठते। और कहने जिथे तालमेल बैठ जाए रस बनता भी उत्थे ही है, वरना रस नहीं बनता। और किसे दिन कीर्तन सुनदे हां किसे नूं रस आ गया, तालमेल बैठ गया। अवल ते मैं देखिया कीर्तन दा रस ते किसे नूं विरले नूं ही आउंदा है, लोक सुरां दे आवाजां दे अगले दे रंग रूपे च या व्यर्थ दियां साखियां च फस के रह जांदे ने, जिन्हां दा इतिहास नाल भी कोई मतलब नहीं, सच्चाई नाल भी कोई मतलब नहीं। मैं ते इत्थे तक देखिया इतनी नीवी लोकां दी स्रोत, ये किस तरह गुरु नूं सुणनगे, ये किस तरह गुरबाणी नूं सुणनगे। ये बाणी बिरलो विचार सी, जेको गुरमुख होए सच दी विचार, फोकियां साखियां नहीं। और जिहड़ी साखी गुरु ग्रंथ साहिब दी विचारधारा ते पूरी नहीं उतरदी, उस दी सच्चाई है किथे, हकीकत है किथे। खैर मुख्तसर जो मैं अर्ज करा, गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे विचारां विच निरंकार है, दैवी गुण ने, ईश्वरी गुण ने, ये सुन के ही अंदर प्रवेश करदे ने। शब्द अंदर प्रवेश करेगा, समाधि बनेगा, दैवी गुण बनेगा, और समझ आ जाएगी उस परिपूर्ण परमात्मा दी, अकाल पुरख दी। किस अकाल पुरख दी, जिदे बारे धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहंदे ने, अनेक हैं फिर एक हैं। जो एक होंदा होया अनेक है, ते अनेक होंदा होया एक है। इति पहली हो गई, वो अनेक भी है, वो एक भी है, वो एक भी है, वो अनेक भी है। हाँ, वो आकार रहत है, वो आकार वाला भी है, वो सरगुण है, वो निर्गुण है, निर्गुण आप सरगुण भी ओही, कलाधार जिन सगली मोही। वो निर्गुण रूप दे एक है, वो सरगुण रूप दे अनेक है। वो एक तो अनेक है और अनेक तो एक है। कदी जगत दे बगौर मुताला करके देखना, सब कुछ अनेक है, एक कुछ भी नहीं है। मनुख अगर बारों कुछ एकता लेना चाहे तो हो नहीं सकती। आप इतने सारे बैठे हो, सब वख वख हो, मेरे करते एक खेल रचाया, कोई न किसी ही जेहा उपाया, एक जैसा दूसरा नहीं है। लखा मनुखी बच्चे रोज जन्म ले रहे ने, नवा रूप लेके आमदे, नवी आवाज, नवी चाल, और गजब दी गल, नवी ही उंगलियां दी छाप। आप इतने सारे बैठे हो, हर एक दे फिंगरप्रिंट अलग अलग ने, हर एक दे अंगूठे दी छाप अलग अलग। एक दा अंगूठा दूजे नाल मेल नहीं खांदा। इस वक्त जमीन देते कोई 5 अरब दे करीब मनुख ने, इसका मतलब है 5000 अरब अंगूठे अलग अलग ने। और जितने मनुख हो गुजरे ने सब दे अलग अलग, जितने नवे आ रहे ने सब दे अलग अलग। आवाज अलग, चाल ढाल, अगर रंग रूप अलग, एक जैसा दूसरा नहीं है। मनुख की गल छड़ो, एक पहाड़ जैसा दूसरा पहाड़ नहीं है। एक नदी जैसी दूसरी नदी नहीं है, एक दरख्त जैसा दूसरा दरख्त नहीं है, दरख्त की गल छड़ो, एक पत्ते जैसा दूसरा पत्ता नहीं है, एक फुल जैसा दूसरा फुल नहीं है। एक दरख्त नूं जे 1,000 फल लगे ने, 10,000 फल लगे ने, एक फल जैसा दूसरा फल नहीं है। इस चक्कर च ना पैना कि 1,000 अंब एक दरख्त नूं लगे ने, सारे इको दरख्त दे फल ने तो एक जैसे ने, कतई नहीं। रंग दे, रूप दे, आकार दे, वजन दे, स्वाद दे, लाजमी फर्क होगा। ये गल वखरी है कि वह फर्क साड़ी पकड़ दे आवे भावे ना आवे, वह फर्क साड़े तौल दे आवे भावे ना आवे, पर फर्क है। एक जैसा दूसरा परमात्मा बनांदा ही नहीं, पुनरुक्त नहीं करता और रिपीट नहीं करता। कहिंदे ने परमात्मा विच रिपीटेशन नहीं है, वो कुछ भी रिपीट नहीं करता। और जिस दिन एक जैसा वो दूसरा बनाने लग पाया तो समझ लेना रब भी मुक गया, खत्म हो गया। ऐसा नहीं होगा। एक सूरज जैसा दूसरा सूरज नहीं है, एक चंद्रमा जैसा दूसरा चंद्रमा नहीं है, और एक सूरज नहीं है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, कई कोट ससियर सूर निखत्र, कई करोड़ा सूरज ने, कई करोड़ा चंद्रमा ने, कोई एक है। और आज विज्ञान ने इसकी तस्दीक कर दी है कि गालबन 50 अरब सूरज साड़ी पकड़ दे, साड़ी समझ दे आ गए ने, इतने। इस तो अगां भी पसारा हो सकता है। जिस तरह साड़ी उम्र है, सूरजां दी भी उम्र है। कुछ सूरज बचपन दे दौर दे ने, कुछ जवान हो चुके ने, कुछ बुढ़े ने, कुछ खत्म होने वाले ने, मिटन वाले ने। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने, घटंत दीपं घटंत रूपं घटंत रव सस निखत्र गगनं। सूरज घट रहा है, एक दिन मिट जाएगा। चंद्रमा घट रहा है, एक दिन मिट जाएगा। धरती घट रही है, एक दिन मिट जाएगी। मनुख घट रहा है, एक दिन मिट जाएगा। सब कुछ बढ़ता है, घटता है, मिटता है। ये तिने नियम हर एक ते लागू ने, सूरज चंद तारिया ते भी लागू ने। और विज्ञान ऐसा कह रहा है कि एक सूरज, ये सूरज जिस दे थले असी जी रहे हैं, ते अपनी जवानी हंडा चुके, बुढ़ा हो गया। 40 लाख टन वजन एक सैकंड दे चिस्ता घट रहा है। घटंत दीपं घटंत रूपं घटंत रव सस निखत्र गगनं। गुरु अर्जन देव जी महाराज, ये घट रहा है, एक दिन मिट जाएगा। इस दे मिटन नूं महापरले कहंदे ने। एक ब्रह्मंड दी परले, एक ब्रह्मंड दा खात्मा। बुढ़े सूरज दे थले असी जी रहे हैं, भावें अरबा खरबा इहदी साल उम्र है, लेकिन उम्र है। हर चीज वधदी है, घटदी है, मिटदी है। एक सूरज जैसा दूसरा सूरज नहीं है, एक चंद्रमा जैसा दूसरा चंद्रमा नहीं है, एक मनुख जैसा दूसरा मनुख नहीं है, एक दरख्त जैसा दूसरा दरख्त नहीं है, एक नदी जैसी दूसरी नदी नहीं है। परमात्मा रिपीट नहीं करता, पुनरुक्ति नहीं करता, दोहरांदा नहीं है। और जिस दिन परमात्मा दोहराण लग पाए तो समझ लेना परमात्मा भी मुक गया। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, साहिब मेरा नीत नवा सदा सदा दाता। वो तो नित नवा है, उस तो जो कुछ भी आंदा है नित नवा ही आंदा है। बहुत लंबे चौड़े पसारे नूं ना लईए, लखां मनुखी बच्चे रोज जन्म ले रहे ने, नवी आवाज लेके, नवा रूप लेके, नवे नैन नक्श लेके, नवी अंगूठे की छाप लेके, नवी उंगलियां की छाप लेके। हर बच्चा अलग है, एक जैसा दूसरा नहीं है। मेरे करते एक खेल रचाया, कोई ना किसी ही जिहा उपाया। सब कुछ अनेक है, वक वक है, पर इस सारी अनेकता दे रमे आया एक है, एक है। अमान है, निधान है, अनेक है, फिर एक है। तू अनेक होंदा होया एक है, और तू एक होंदा होया अनेक है। ऐसा क्यों कीता है परमात्मा ने? वो एक तो अनेक क्यों है? धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का इस संबंधी जवाब कलगीधर पातशाह का। महाराज कहते ने, एक मूरत अनेक दर्शन, कीन रूप अनेक, खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक। अनेकता उस एक दा खेल है, तमाशा है। खेल या तो बच्चे खेडते ने खेल, या परमात्मा खेडता है, बाकी खेल नहीं है। जिस दे च जित होवे, जिस दे च हार होवे, वो खेल नहीं है, वो जंग है। जिस दे च नफा होवे, जिस दे च नुकसान होवे, वो खेल नहीं है, वो ते धंधा है। मनुखी जगत दे सब तो वड्डियां खेलां ओलंपिक मेरी दृष्टि, वो भी एक जंग है, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਧੰਦਾ ਹੈ, ਖੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖਿਲਾੜੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣਾ ਮੁਲਕ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਮੁਲਕ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਇਹ ਜੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਖੇਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖਿਲਾੜੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੋਗਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖਿਲਾੜੀ ਜਿੱਤ ਜਾਣ, ਨੱਚਦੇ ਹੋਏ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜੈਸੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਵਾਕਈ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਲਾਣਾ ਮੁਲਕ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤੋ ਇਹ ਖੇਲ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਹੈ? ਇਹ ਖੇਲ ਹੈ ਕਿ ਧੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਖੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕਤਈ ਖੇਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਕਤਈ ਖੇਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦੀ ਘਿਰਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦਾ ਤਕੱਬਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਖੇਲ ਆਖਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਉਹ ਖੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਜੰਗ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਨਫੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਖੇਲ ਆਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਧੰਦਾ ਹੈ। ਖੇਲ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਖੇਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ, ਸਾਗਰ ਦੇ ਤੱਟ ਤੇ ਬੱਚੇ ਖੇਲ ਪਏ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਰੇਤ ਦੇ ਮਹਿਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਲਗਨ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੋ ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜੋ ਇਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪਏ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਤਨੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਖੇਲ ਹੈ, ਪਰ ਬੜੀ ਲਗਨ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇਹ ਮਹਿਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਿਲ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਇਧਰੋਂ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਘਰ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ। ਹੱਸਦਿਆਂ ਹੱਸਦਿਆਂ ਰੇਤ ਦੇ ਮਹਿਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਹੱਸਦਿਆਂ ਹੱਸਦਿਆਂ ਹੁਣ ਤੋੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸਨ ਖੁਸ਼, ਹੱਸਦਿਆਂ ਹੱਸਦਿਆਂ ਅੱਜ ਮਿਟਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਖੁਸ਼, ਹੱਸਦਿਆਂ ਹੱਸਦਿਆਂ। ਖੇਲ ਹੈ, ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਖੇਲ ਸੀ, ਮਿਟਾਉਣਾ ਵੀ ਖੇਲ ਸੀ। ਆਵਨ ਜਾਨ ਇੱਕ ਖੇਲ ਬਣਾਇਆ, ਆ ਗਿਆ ਕਾਰੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮਾਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਖੇਲ। ਜੰਮਣਾ ਇੱਕ ਖੇਲ, ਮਰਨਾ ਇੱਕ ਖੇਲ, ਨਫਾ ਇੱਕ ਖੇਲ, ਨੁਕਸਾਨ ਇੱਕ ਖੇਲ, ਜਵਾਨੀ ਇੱਕ ਖੇਲ, ਬੁਢੇਪਾ ਇੱਕ ਖੇਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਨੀ ਬੁਢੇਪੇ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦੇ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਖੇਲ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਕਰੂਪਤਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਸੇ ਰੋਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫੁੱਲ ਖਿਲਤਾ ਹੈ ਮੁਰਝਾਨੇ ਕਾ ਤਹੱਯਲ ਲੇਕਰ, ਜਿੱਥੇ ਹੱਸਤਾ ਹੁਆ ਪਾਓਗੇ ਵੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਗਾ। ਹਾਸਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਛੁਪੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਸੰਤਾਪ ਜੋ ਹੈ ਛੁਪੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਨਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮਰਨ ਛੁਪਿਆ ਪਿਆ। ਖੇਲ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਬਿਠਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ। ਜਦ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੋ ਇੱਕ ਤੋਂ ਅਨੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਮਿਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੋ ਅਨੇਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਲ ਸੰਕੋਚੇ ਤੋ ਨਾਨਕ ਏਕ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਖੇਲ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚਦਾ ਹੈ ਇੱਕ, ਤੇ ਜਦ ਖੇਲ ਖੇਲਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਨੇਕ। ਏਕ ਮੂਰਤ ਅਨੇਕ ਦਰਸ਼ਨ, ਕੀਨ ਰੂਪ ਅਨੇਕ, ਖੇਲ ਖੇਲ ਅਖੇਲ ਖੇਲਨ, ਅੰਤ ਕੋ ਫਿਰ ਏਕ। ਇਸ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਵੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੇ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਘਿਰਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਤ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਦਰ ਨਾਲ। ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝਰਨਾਟ ਵੱਜੇਗੀ, ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜਾਗਣਗੀਆਂ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਚਰਚ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਿਆ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤਰੰਗਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਭੇਦ ਤੇ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਸ ਪਿਆ ਅਨੇਕਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੈ। ਅਨੇਕਤਾ ਉਸਦਾ ਖੇਲ ਹੈ, ਵਾਸਤਵਿਕ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਇੱਕ ਹੈ, ਕਿਰਨਾਂ ਅਨੇਕ ਨੇ, ਸਾਗਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਲਹਿਰਾਂ ਅਨੇਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਗਰ ਨਾਲ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਨੇਕਤਾ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਦਾ ਕੋਈ ਬੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਏਕ ਵਸਤ ਬੂਝੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਪਾਕ, ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਤੋਂ ਸਦਾ ਨਾ ਪਾਕ। ਜੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਏ ਤੂੰ ਪਾਵਨ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਤੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਢੇਰੀ। ਭੱਟਾ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਈਆ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਪਮਾ ਦੇ, ਭੱਟ फरमान कर देने, हे गुरु अमरदास तैं पढ़े हो एक, मन धरे हो एक, कर एक पछाणे हो। हे गुरु अमरदास तुसी जीवन भर पढ़िया ते एक नू पढ़िया, दो तीन चार पांच नहीं, एक। सिर्फ एक नू पढ़िया ही नहीं, मन विच भी एक नू वसाया। धन गुरु नानक देव जी महाराज भी कहंदे ने, दुबदा ना पढ़ो, मैं एक तो बिना दूजा नहीं पढ़न तैयार, दूजी तीजी गल मैं सुनन नू तैयार नहीं, पढ़न नू तैयार नहीं। दुबदा ना पढ़ो, हर बिन आवर ना पूजो, मड़ी मसान न जाई, तृष्णा राच न पर घर जावा, तृष्णा नाम बुझाई। मैं नहीं दुबदा पढ़ता। भट्ट कहने ने, हे गुरु अमरदास तैं पढ़ियो एक, तुसी जीवन भर पढ़िया एक नो, सिर्फ पढ़िया ही नहीं मन दे च वसाया एक नो, तैं पढ़ियो एक, मन धरियो एक, कर एक पछाणियो, नैण बैण मोह एक, एक दोए ठाए न जाने। थोड़ी अखां च भी एक है, जिथे तक वेखदे हो एक नो, थोड़ी जबान ते भी एक है, जिन्ने बोल बोलदे हो उन्हां च एक प्रगट आउंदा है, अनेकता नहीं, दुबदा नहीं। थोड़ी जबान ते भी एक, थोड़े अखां दे च भी एक। आखिर धार्मिक मनुख की पहचान किस तरह करोगे? उसके व्यवहार तो, उसके बोलन तो, उसके वेखण तो, उसकी तर्ज जिंदगी तो, और किस तरह हो सकता है? गुरुद्वारे आने वाला भी अधार्मिक होवे, हो सकता है मंदिर दे रोज पूजा पाठ करने वाले का भी कोई भगवान नाल संबंध ना होवे। व्यवहार तो पता चलेगा, उसके आचरण तो पता चलेगा कि इहदे जीवन दे निरंकार प्रगट होया है कि नहीं। भट्ट कहिंदे ने, हे गुरु अमरदास थोड़ी रसना ते इक, थोड़े नेत्रां दे चिक, नैण बैण मोह इक, एक दोए ठाए ना जाने। तुसी एक तो बिना दूजे नू नहीं जानदे, थानू एक ही एक दिखाई देंदा। सारियां किरणां दे इक्को ही सूरज दिखाई देंदा है, थानू सारी लहरां दे इक्को ही सागर दिखाई देंदा है, थानू सारी अनेकता दे इक दिखाई देंदा है। भट्ट गुरु अमरदास जी महाराज की उपमा करदे होया अगां चल के कहंदे ने, सुपन इक पर तख इक, इकसमे लीणे। हे गुरु अमरदास तुसी जागदे रहिंदे हो, एक दे च लीन रहिंदे हो, पर जब तुसी सौ जांदे हो तुहानू सुपने भी एक दे ही आउंदे ने, तुसी सुपनियां दे च भी एक दे च लीन रहिंदे हो। थोड़ी जागृत अवस्था एक नाल जुड़ी हुई है, थोड़ी स्वपन अवस्था भी एक नाल जुड़ी हुई है। सुपन एक पर तख एक, इकसमे लीणे हो, तीस एक अर पंच सिद्ध पैंतीस निखेणे हो। ये सारे हिंद से जमा करने पैणगे, जोड़ करना पड़ेगा। तीस एक अर पंच सिद्ध पैंतीस निखेणे हो, तीस एक इकती पंच छत्ती ते पैंती इकहत्तर। हे गुरु अमरदास ये अवस्था थोड़ी इकहत्तर वरे की उम्र दे बनी, इकहत्तर साल की अवस्था दे ऐसा जीवन आपनू नसीब होया। तीस एक अर पंच सिद्ध पैंतीस निखेणे हो, इको जे लाख लखो अलक है एक एक कर वरने हो। गुरु अमरदास कब भल भण तू एक लोड़े एक मने। कवि भल भट्ट कहंदे ने, हे गुरु अमरदास मैं सच कह रहा, थानू एक दी लोड़ है, तुसी एक नू मनदे हो, एक नू वेखदे हो, एक नू बोलदे हो, एक नू पढ़दे हो, और एक नू मन दे च वसाया। थोड़ी जागृत अवस्था दे चिक, थोड़ी स्वपन अवस्था दे चिक, तुसी इस गल नू समझ लिया है कि एक वस्तु बूझे ता होवे पाक, बिन बूझे तू सदा ना पाक। एक नू कोई समझ जाए, एक नाल कोई जुड़ जाए, ओही पवित्र है, बाकी कोई पवित्र नहीं। क्योंकि उन्हू सारियां लहरां दे सागर दिखाई देगा, उन्हू सारियां किरणां दे सूरज दिखाई देगा, उन्हू सारे मनुखां दे प्रभु दिखाई देगा, उन्हू सारे पशु पक्षियां दे ईश्वर दिखाई देगा। जो दिसे सो तेरा रूप, गुण निधान गोविंद अनूप, ए विश्व संसार तुम देख दे, ए हर का रूप है हर रूप नदरी आया। ए अवस्था जिसकी बन जाए ओही पावन है, ओही पवित्र है। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहंदे ने, तू एक होंदा होया अनेक है, और अनेक होंदा होया एक है, अनेकता तेरा खेल है, अनेकता तेरा तमाशा है, ते बस मैं यही तमाशा देखन लिए आया। मैं हूं परम पुरख को दासा, देखन आयो जगत तमाशा। अजीब है तेरा तमाशा देख रहे हैं। एक सूफी दा कहना है, जो हंस रहा है सो हंस रहेगा, जो रो रहा है सो रो रहेगा, सकूने कलब से खुदा खुदा कर जो कुछ के होना है सो हो रहेगा, उसका तमाशा है इतने होवेगा। तू वेखण वाला बन। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहंदे ने इस तमाशे दे बड़ी भारी अनेकता है और ये अनेकता उसका तमाशा है। इसे अनेकता दे जिसनू एक दी समझ होवे, एक दिसे, एक रसना ते आ जाए, एक हिरदे च वस जाए, वो ते पावन है, वो ते पवित्र है। बाकी सारे दे सारे अपवित्र ने। एक वस्तु बूझे ता होवे पाक, बिन बूझे तू सदा ना पाक। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दा पहला अक्षर एक, एक तो गुरबाणी आरंभ होंदी है ते सारी गुरबाणी एक दा ज्ञान करांदी है। जो एक नाल जुड़ गया बस ओही ब्रह्म ज्ञानी, ओही भगत, ओही संत, ओही फकीर, ओही वली अल्लाह, ओही अवतार, ओही महापुरुष और ओही पावन, ओही पवित्र। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज बख्शिश करन। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे इस छंद दी विचार सरवण करदे आ, आप नू एक दी समझ पवे और सिर्फ समझ ही ना पवे, सारी अनेकता दे एक दिखाई देवे, ताकि कथा सुनी हुई दा लाभ सड़ी झोली दे पै जाए। साहिब रहमत करन, सुन के थानू आनंद मिले और सुना के मैनू एकाग्रता नसीब होवे। कोई गावे को सुने हर नामा चितलाए, कहो कबीर संसार नहीं अंत परम गत पाए। सारे दा हार्दिक तौर से धन्यवाद। बड़े टिकाओ नाल एकाग्रता दे नाल आपने गुरबाणी विचार नू जो है सरवण कीता। कल फिर इसे समय दास आप जी दे चरण परसेगा। पहले दास दे नाल आए हुए साथी विचारां ते कीर्तन सरवण कराणगे, उस तों बाद दास गुरबाणी विचार आप जी दे सामने जो है पेश करेगा। साहिब रहमत करन। इसे तरीके नाल संजोग बनाई रखन भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: Need help navigating our ever-changing real estate market? Gerdale Baud of RE/MAX Real Estate Services is among the top 1% of all Lower Mainland realtors. Whether you're thinking of buying or selling residential properties, commercial properties, or farmland, call the agent with 30 years of experience to help you. Gerdale Baud, your realtor for life. Call Dale at 604-303-7653 or go online at GerdaleBaudGroup.com.

फिर जन्म मरण तो रहत हो जाएगा, परम आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। हुण एक गल रमज दे चाखी गई है, अगे की वेखी है कि ठीक है, प्रभु ने अखां अगे ही लाईया ने, अगे वेखणगियां, पर साहिब कहिंदे ने दे लम्मी नदर निहाली, बड़ा लंबा देख, अपनी मंजिल नूं देख, टिकाने नूं देख। तो हुण मैं अर्ज करां, एक बच्चा अगर अपने जीवन विच अगे वेखे तो की है, जवानी है, जबकि कोई बच्चा अगे नहीं देखता, बचपन दे ही उलझिया रहिंदा, अपने हाण दे ही उलझिया रहिंदा। कोई बच्चा जवानी नूं नहीं देखता, अपने जीवन विच नहीं देखता, जवाना नूं देखना होर गल है, अपने विच जवानी नू देखना होर गल, उहदे बड़ी गहरी दृष्टि चाहीदी है। जरा होर अगे वेखे तो फिर की है बुढ़ेपा। जद बच्चे नू अजे अपने विच जवानी ही नहीं दिखाई देंदी तो बुढ़ेपा की हक दिखाई देगा। होर जरा अगे निगाह करे तो की है, काल है। काल दे अर्थ ते समा है, पर समय दे अर्थ मौत भी है। क्यों? समय दे जो बनता है समा उसनों मिटा देंदा है। समय दे ए दो सुभाव ने, बनाना मिटाना, बनाना मिटाना। काल दे ए दो सुभाव ने, जो समय दे बने है। जैसे असी कुछ समा पहले नहीं सी, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 साल पहले नहीं सी, कुछ साल बाद नहीं होवांगे। जो समय विच बने हैं समा मिटा देंदा है। मैं कल अर्ज कीती सी, काल इतना प्रबल है कि तन चाहे गुरु पीर पैगंबर अवतार दा है, समा मिटा देंदा है। काल पाए ब्रह्मा बपधरा, काल पाए शोजु अवतरा, काल पाए करबेसन प्रगासा, सकल काल का कियो तमाशा। सारा संसार काल दा तमाशा है, समय दा तमाशा है। इस तमाशा की हो रहा है, बनना हो रहा है, मिटना हो रहा है, मिलना बिछड़ना हो रहा है, बनना मिटना हो रहा है, एक तमाशा हो रहा है। जो बन रहे है ओही मिट रहे है, जो मिल रहे है ओही नाश हो जाता है। इस समय च हो रहे है। एक बच्चा ते बचपन दे च उलझिया रहिंदा है, कौन काल नूं वेखे। पर जरा होर अगे वेखे, काल तो भी अगे, तो फिर ओ अकाल है। जिहदी दृष्टि अकाल तक पहुंच गई, जन्म मरण तो रहत हो जाएगा, परम आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। अपनी दृष्टि, अपनी समझ, अपनी सुरत अकाल तक पहुंचानी है। जिदी दृष्टि अकाल तक पहुंच गई, उन्हों काल नहीं रोकेगा, उसके अंदर काल का भय भी नहीं रहेगा। जैसे धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे मासूम लाडलिया नो मौत दा डर दे के भयभीत नहीं कीता जा सके। तरह तरह दे भय दे साधन हरनाकश ने मुहैया कीते प्रहलाद वास्ते, वो नहीं डरिया क्योंकि दृष्टि अकाल ते। काल की डराएगा, दृष्टि ते अगे लंघ गई। हुण मैं थोड़ा दोहरावा, बच्चा अपने बचपन दे ही उलझिया रहिंदा है, खिडौणियां दी खेड अपने हाण विच। जवान भी अपनी जवानी च ही उलझिया रहिंदा है, अगे नहीं देखदा, अपना हाण और अपनी वासना, अपनियां कामनावां। एक जवान जवानी तो अगे नहीं देखदा, जबकि उसके जीवन विच कुछ अगे भी है, प्रगट होवेगा, सामने दिखाई देवेगा, पर इतनी लंबी निगाह होवे। और भी अर्ज कर दें, बुढ़ा ए ते